गोविंद राय हाथ जोड़ के कहन लगे, महाराज जी किसे महान पूर्ण पुरख दी कुर्बानी नाल ही इस सब कुछ बचदा है ता फिर आप तो महान कौन है ते आप ही बचाओ। खड़ावा पहन के गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज चल पे, त्याग ते वैराग आप दे रोम रोम दे भरे होया है। हकीकत है बहुत वड्डी सच्चाई है कि वैराग तो बिना परमात्मा दी प्राप्ति नहीं, अकाल पुरख दी प्राप्ति नहीं। वैरागी हिरदा ये महसूस करदा जगत कुछ भी नहीं है, ये संसार कुछ भी नहीं है। ते जद संसार कुछ भी नहीं, जगत कुछ भी नहीं, वो फिर उदास रहेगा, उपराम रहेगा। उपरामता ते उदास होना धार्मिक दुनिया का पहला लक्षण है और शुभ लक्षण है। जो जगत तो उदास नहीं होया, उपराम नहीं होया, वो परम जगत की प्राप्ति की चेष्टा भी नहीं करेगा। जो संसार तो उपराम नहीं होया, वो निरंकार की प्राप्ति का उद्यम भी नहीं करेगा। यह हकीकत है। जेदे लई ए संसार सब कुछ है उस दे लई निरंकार सुपना है, ते जेदे लई ए संसार तुच्छ मात्र है सुपना है ओदे लई परमात्मा हकीकत है, ओदे लई परमात्मा सच्चाई है। दो तरह के मनुख जगत विच मिलणगे, किसे लई संसार सुपना है, किसे लई निरंकार सुपना है। किसे लई पदार्थ सुपना है ते किसे लई परमात्मा सुपना है। इंज कह लो, संतां लई पदार्थ सुपना है ते आम संसारियां लई परमात्मा सुपना है। ते जो सुपना है उदे नाल की जुड़ना, जो सुपना है उदे उते की मान करना। तो कईयां दी दृष्टि विच परमात्मा सुपना है ते कईयां दी दृष्टि विच पदार्थ सुपना है। ते जद पदार्थ सुपना प्रतीत दिखाई दे, जद संसार तुच्छ मात्र प्रतीत होवे, तो उदास होना लाजमी है, फिर उपराम होना लाजमी है। साडे देश दे साधु संत महात्मा कोशिश करते रहे कि अंदर उदासीनता का जन्म होवे, बैरागी बिरतियां का जन्म होवे, उपरामता का जन्म होवे। किसे उजाड़ दे चले जाइए, जंगल दे चले जाइए, जिथे कोई मनुख ना होवे गलबात करने वाला, जिथे चारों पासे वहशत ही वहशत होवे, तनहाई ही तनहाई होवे। ओ तनहाई, ओ उजाड़ मन नूं उपराम करे, उदास करे, ताकि निरंकार दी प्राप्ति अंदरों पैदा होवे, ताकि ईश्वर दी प्राप्ति दी धुन, ईश्वर प्राप्ति दी लगन अंदरों जन्म ले सके। आद काल तो साडे देश विच इस तरह दे लोग घर बार नूं छड़ के, बाजार महल माड़ियां नूं छड़ के, गोशा तनहाई पहाड़ां दीआं कंधरां ते बियाबान जंगलां विच जांदे रहे, मैज़ इस वास्ते कि उदासीन बिरती पैदा होवे, उपराम बिरती अंदर उजागर होवे। गुरु नानक देव जी महाराज दे एक साहिबजादे दा नाम बाबा श्री चंद, जिन्हां ने इस देश दे उदासीन परंपरा नूं जन्म दिता और आप दे साधुआं नूं उदासी साधु करके आख्या जांदा है। और ये उदासीन संपर्दा अज भी मौजूद है, जिसने गुरबाणी का महान प्रचार देश देशांतरां दे विच कीता। साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने कि उजाड़ विच जाके, बयाबान जंगल विच जाके मन नूं उपराम करना है, उदास करना है, उस तो बेहतर है घर नूं ही जंगल समझ लिया जाए, घर नूं ही उजाड़ समझ लिया जाए। रे मन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज उपराम उदास ते बैराग दी मूर्ति सन। जगत विच कुछ भी ऐसा नहीं कि आप नूं खिच लवे, आप जगत तो उच्चे जीवदे सन। लेकिन जगत तो बिरतियां उच्चियां हो सकन, आपने जंगल विच जाना मुनासिब नहीं समझिया। आप साफ कहंदे ने, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। वो जो व्यापक है, वो जो सर्व व्यापक है, वो जो रोम रोम विच वसिया होया है, वो ते तेरे कोल है, बन विच किथे जाना है। सर्व निवासी ते सदा अलिप्त, ये दो शब्द ऐसे ने जो खोज दे मुस्तहिक ने। जो व्यापक है, सर्व निवासी है, वो

अजल हुआ राम ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम। किरण सूरज दे चलेन हो जाए तो सूरज है, सूरज तो अलग दिखाई देवे तो किरण है। जीव आत्मा परमात्मा दे चलेन हो जाए तो परमात्मा है, परमात्मा। और जिन्ने चिर तक नियारी दिखाई दे रही उन्ने चिर तक जीव आत्मा, जीव आत्मा है। प्रकाश है ए सूरज दी किरण है परमात्मा दे अंश। मैं फिर दोहरावा, कहो कबीर ए राम की अंश। प्रकृति एक दिन तन नो मन नो इदे जेर असर तन आउंदा पहले प्रकृति दे और प्रकृति तन नो मिटा देंदी। रोज रोज असी मिट रहे हैं, रोज रोज असी घट रहे हैं। जे रोज रोज असी जी रहे हैं ते रोज रोज असी मर रहे हैं। तुसी आखोगे ए की कहंदे रोज रोज जी रहे हैं, जी रहे हैं पर रोज रोज मर रहे हैं क्योंकि घट रहे हैं। घटना मिटना ही है और की है। एक मनुख ने चलो 100 साल जीवना है, अज दा एक दिन लंघ गया घट गया, एक दिन घट गया। छिन छिन औद बेहात है, फूटे घट ज्यों पानी। शरीर दोवां दिशावां दे जा रहा है, रोज रोज वध रहा है, रोज रोज घट रहा है। वधना घटना कट्ठा ही चल रहा, कट्ठा ही चल रहा। दिस रहा है तन वड्डा हो रहा है, हकीकत दे उम्र घट रही है, घट रही है, घट रही है। चूंकि घट रहा है तो एक दिन प्रकृति इसनू मिटा देती है। ये जिहड़ा मन है ना, ये नहीं मिटता। जीव आत्मा ते परमात्मा दी अंश मिटण दा मतलब ही नहीं। मन दे अंदर जिहड़े विचार चलदे ने तो विचारां नू कौन देखदा है? जीव आत्मा। बंदा कह देंदा ना मेरे विचार ने, ते जे विचार नू मन मन लईए ते मन नू कौन देख रहा है जो कह रहा है मेरे विचार। रात नू जब तन सौ जांदा ते मन भी गूढ़ी निंदरा दे सौ जांदा, जिहनूं सुखोपती कहिंदे ने, सुषुप्ती कहिंदे ने, ते सवेरे उठ के बंदा कहिंदा बड़ी गूढ़ी नींद, बड़ी गहरी नींद आई। तो तन ते सुन हो गया सी, मन भी सुन हो गया सी। ये बोध किसनों हो रहा है? बड़ी गूढ़ी नींद आई। ये जीव आत्मा नु बोध होंदा। मन ते विश्राम ते चला गया, मन ते सो गया। तार्किक एक इस तरह की तर्क खड़ी कर देने, जीव आत्मा परमात्मा की अंश है, सूरज की किरण है, फिर अंदर इतना अंधेरा क्यों है? क्यों अंधेरा? ये परमात्मा की अंश है, परमात्मा परम आनंद है, ये उसकी अंश है, पर अंदर इतना दुख क्यों है? मैं ये मूल सिद्धांतिक नुक्ते थोड़े सामने रख रहा, सारी जिंदगी में कर्म कांड च ना लग जाए। परमात्मा महारस है, आत्मा उसकी अंश है, महारस है, पर जीवन दे जितनी बेरसी कितों आ गई? ये बेरसी क्यों है? परमात्मा निर्वैर है, जीव आत्मा उसकी अंश है,

किञ्चित् साधसङ्गम् ऊट नानक नारायणे। धार्मिक दुनिया विच काम एक ऐसा विषय है, एक ऐसा प्रकरण है, एक ऐसा मजमून है जो अछूता है, जिसते बहुपक्षी विचार नहीं हुई, जी किधरे हुई है इशारतन खुल के नहीं हुई, जी किधरे हुई है दबे हुए अल्फाजा खुले शब्दां दे च नहीं, उसका एक कारण भी दिखाई देंदा है। मनुख दा लोभ बार प्रगट होंदा है और बार भी वो कृत है, धन दी पकड़, पदार्थां दी पकड़ और उस लई भज दौड़ दिखाई दे जांदी है। क्रोधातर मनुख दा क्रोध भी एक ऐसी कृत है जो बार किसे ते प्रगट होंदा है, दिखाई दे जांदा है। इते इस वक्त क्रोध दे जी रहे, अहंकार बोलां दे राहीं तरह तरह दी कृत दे राहीं प्रगट हो जांदा है, दृश्यमान है। काम एक अंदरूनी वेग है, एक अंदरूनी बिरती है, एक अंदर दा उछाल है। शायद एक कृत भी अंदरूनी बन गई, पड़दे विच बन गई। क्रोध कृत प्रगट है, लोभ कृत प्रगट है, अहंकार प्रदर्शित होंदा है, लेकिन काम पड़दे विच होंदा है, छुप के होंदा है। इस कृत नूं सब तो छुपाया जांदा है, हर एक तो छुपाया जांदा है। शायद इसे वास्ते काम दी कोई खुल के चर्चा नहीं हुई। इस दे संबंध विच महापुरुषां ने खुल के कुछ लिखिया भी नहीं है। लिखे हुए ग्रंथ मिलते ने क्रोध दे उते, लोभ दे, अहंकार दे, मोह दे, लेकिन ए विषय बड़े बड़े सतपुरुषां दी कलम तो भी अछूता रह गया। और मूल कारण यही दिखाई देंदा है कि काम कृत मनुख सरेआम नहीं करता है। ये गल वखरी है कि पशु सरेआम कर देने, पंछी सरेआम कर देने और इस कृत नूं दिनदिश कर देने, जबकि मनुख ने इस कृत नूं रात लई चुने है। पढ़दा ते फिर रात दा पढ़दा, छुप के फिर रात दा अंधकार। यही कारण है कि इस दी विचार भी किधरे होई है बहुत तारीकी देच, बहुत पर्दियां देच, बहुत छुप छुप के होई है। क्रोध दी चर्चा मनुख सरेआम करता है, अहंकार दी गल भी सरेआम करता है, बहस मुबासे देच मोह दा भी जिक्र आम चलता है, लेकिन काम इस दी विचारधारा, इस दी चर्चा, इस दा बहस मुबासा भी करन लई मनुख किसे विशेष थां नूं चुणदा है और विशेष व्यक्ति नूं चुणदा है, हर एक दे सामने इस दी चर्चा करन लग्या भी संकोच करदा है, छुपांदा है इस विचार नूं। और यही कारण है चाहे राजनीतिक दुनिया है, चाहे सामाजिक दुनिया है, चाहे धार्मिक दुनिया है, हर विषय ते विचार होइए यही एक विषय है जो अछूता रह गया। जे प्रातन
कुछ ऋषियों ने जैसे के वात्सायन, कोका पंडित इत्यादिक ने काम सूत्र लिखे, तो एक कोई बहुत सारे ग्रंथ नहीं ने, थोड़े ने। और हैरानगी दी गल ए है कि इन्हों महापुरुषों ने भी जो कुछ लिखे है काम कृत नू किवें प्रगट करना है, इस कृत दा किवें प्रयोग करना है, यही लिखे। अगर कोई महापुरुष ए लिखे कि क्रोध किवें करना चाहिए, इन्हों किवें प्रगट करना है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, ये महापुरुष नहीं है। अगर कोई हंकार की व्याख्या इस ढंग नाल करे कि किवें हंकारी बनी दा है, ते किवें हंकार नू प्रदर्शित करी दा है, और हंकार प्रगट करन दे ढंग दसे, उकसाहन दे ढंग दसे, तो ए विचार ए लेखनी कोई धार्मिक लेखनी नहीं है। और इस संबंध च कोई लिखे कि लोभी किवें बनी दा है, और लोभ नू किवें प्रगट करी दा है, तो ओ स्पष्ट होवेगी गल कि कोई लोभी लिख रहा है। इस वास्ते ऐसा जापदा है वात्सायन ने या कोका पंडित ने, काम सूत्र जो लिखे है काम उभारण लई, काम प्रदर्शित करन लई, कामी किवें बनीदा है और काम नु किवें प्रदर्शित करीदा है, ए लिखे है। इस वास्ते धार्मिक ग्रंथां दी कोटी देच वात्सायन दे काम सूत्र या कोका पंडित दे काम शास्त्र शास्त्र दर्जा नहीं प्राप्त कर सके। वो एक कामियां दी लेखनी बन के रह गए, कामियां दे पढ़न योग ही जो है रह गए, और अत्यंत वासना इस ग्रसे हुए मनुखा ने अपनी वासना नु होर उजागर करन लई उन्होंने पढ़ना पढ़ाना शुरू किया। यही कारण है कि धर्म की दुनिया च और समाज की दुनिया च यह ग्रंथ प्रतिष्ठा नहीं पा सके। इस अछूते विषय नु गुरु नानक देव जी ने, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बकायदा छोया है, अपने विचारां विच थां दित्ती है और इसका जिक्र भी किया है। ये तो ठीक है कि जन्म की क्रिया काम आश्रित है, तो जब काम आश्रित है काम बंद हो जाए, काम रहे ही ना, तो जन्म बंद हो जाएगा। जन्म काम है, काम जीवन का केंद्र है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी जो व्याख्या कर रहे ने अपने पावन शब्दों विच थां दित्ती है, तो महज इसलिए कि जैसे अधिक मात्रा विच खाया होया भोजन अमृत दी थां ते जहर बनता है, तंदुरुस्ती दी थां ते रोग पैदा करता है, इस तरह असीम काम जीवन विकसित नहीं करता बल्कि जीवन भ्रष्ट करता है, तलांजली विच ले जाता है, और यही बार बार दे जन्म ते मरण दा कारण बनता है। शायद इसे वास्ते ही धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने कि काम अनंत जूना दे पाण दा कारण बनता है, जीवन भटक के रह जाता है अनंत जन्मां तक। आप साफ फरमान कर देने, हे काम नरक विश्राम बहु जौनी भरमावण है। इसकी मूल व्याख्या तो इंज बनती है
जब जन्म काम तो होया है, तो काम दी अंश जीवन विच होवेगी, लाजमी होवेगी। जैसे मां बाप तो शरीर आया है, तो शरीर विच मां बाप दी अंश मौजूद है। मां की रकत पिता बिन धारा, पातशाहिंद भी फरमान करते ने, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। पिता दा मैला पानी, मां दी लाल मिट्टी, माटी गोरी गेरवी लाल, इस माटी की पुत्री जोरी। ए गेरवी लाल मिट्टी ते मैला पानी, इस दी सहयोग दे नाल ए मनुखी तन दा पुतला बनया। मिट्टी ते पानी दा मिश्रण कीता एक वेग ने, जिस दा ना है काम। इस वेग ने मिट्टी ते पानी नू जोड़े है, तो इस पुतले विच मिट्टी है, पानी है, ओ वेग भी है। मां दा खून भी है, पिता दा बिंद भी है इस काया विच, लेकिन काम दा वेग भी है जन्म तो ही। इस बिंद नू, इस खून नू असी काया विचों कढ नहीं सकदे। ते जिथे उस बिंद नू, उस खून नू इस काया विचों नहीं कढ सकदे, तो काम नू भी नहीं कढ सकदे। क्योंकि तिन्ना दे मिश्रण दे नाल ही ते काया दा ढांचा बनया है, ये पुतला बनया है। पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी। बड़ा सुंदर ये पुतला बनया। तो सतगुरु देव जी महाराज काम दे त्याग दा उपदेश नहीं दे रहे। इस उपदेश दे चाहे काम दे प्रति संयम। जैसे बकायदा आयुर्वेद ग्रंथ कहंदे ने, भुख लगे खादा होया भोजन दारू है, औषधि है, अमृत है, पर भुख नहीं एक एक बुरकी पाई हुई ए रोग पैदा करेगी। शरीर की लोड़ नहीं तू दे रहे हैं। काम दा वेग शरीर की अधिक शक्ति है, जो शरीर विच नहीं समा सकती। वो अधिक वेग पर बलवाशना बनता है, काम बनता है। इसका निकास सही ढंग नाल हो सके, संयममयी हो सके। बकायदा शिक्षा है, दीक्षा है, मर्यादा बनाई गई है। लेकिन काम शरीर का हिस्सा है, सोचनी का नहीं। आज दे समय दे काम चिंतन का हिस्सा बन गया, काम सोचनी का हिस्सा बन गया। शरीर दे ते है, ये मन विच भी हो गया, चिंतन विच आ गया, सोचनी विच आ गया, विचारां विच आ गया। ताही ते आज जितना साहित बाजार विच बिक रहा है, लोकी खरीद के पढ़ रहे ने, उस साहित विच काम ही काम है। साहित्यकारां दी कलम काम दे संबंध विच लिख रही है। लासमी साहित्यकार काम बारे सोच रहे ने, काम दा चिंतन कर रहे ने, काम दे विचार उन्हां दे अंदर चल रहे ने, काम सोचनी बन गई है। किसे वक्त शायर मशरिक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने आख्या सी, हिंद के शायर व सूरत गर अफसाना नवीस है, बिचारे के आजा पर औरत सवार।
भावें उन्हें अपने देश की गल की, हिंद के शायर व सूरतगर अफसाना नवीस है बिचारे के आजा पर औरत सवार। ये जो नावलिस्ट ने, कहानीकार ने, ये जो संत राश ने, ये जो शायर ने, दार्शनिक ने, विचारक ने, इन्हां दे विचारां विच, इन्हां दी लेखनी विच, इन्हां दी चित्रकारी विच, इन्हां दी संगत राशी विच काम ही काम छाया है। मानो काम तो बिना और कुछ है ही नहीं। सारा साहित्य काम आश्रित हो गया है और इसे ही कहानियां, शायरी दे आधार ते बनन वाली फिल्मां काम दी प्रदर्शित तस्वीर बन गई। चारों पासे मानो काम ही काम छाया हुआ है। पोस्टर्स, इश्तेहार, फिल्मां, मैगजीन, शायरी, संतराशी, तस्वीर सब काम दी नुमाइश बन के रह गए। काम चिंतन बन गया, काम विचार बन गया, काम सोचनी बन गया, काम याद बन गया, काम राम बन गया, काम परमात्मा बन गया। जबकि चाहिदा तो ऐसा सी काम नू राम बना दे, लेकिन काम ही राम हो गया और चारों पासे काम ही मनुख दे दिल दिमाग ते छा के रह गया। काम एक ऐसा जज्बा अगर विचारां च आ जाए, सोचनी च आ जाए, चिंतन दे च आ जाए, तो काम ग्रसिया मनुख राम दा चिंतन नहीं कर सकता, नाम दा सिमरन नहीं कर सकता। भगत रविदास जी महाराज फरमान कर देने हैं,

हे जगत गुरु, हे जगत दे मालिक परमात्मा, असी ते इस दौर दे इस कल युग दे कामी जीव हां, काम नाल भरे होया। प्रथम इस काम नूं अर्थां दे रूप दे समझना है। काम दे अखरी अर्थ ते ने कामना, पर कामनावां विच बहुत वासना है, इस वास्ते प्रियवाची शब्द बन गया काम वासना। कामना विच पदार्थ होवन तो काम लोभ, कामना सता दी होवे तो काम अहंकार। पर चूंकि कामना बहु वासना दी है, इस वास्ते काम वासना ते शब्द पर चलत हो गया काम लोभ, काम अहंकार। ये कथनी विच ना आ सके, ये लेखनी विच भी ना आ सकया। काम दे अर्थ ने कामना, पर चूंकि कामना दी ज्यादा वासना है, रूप है, यही कारण है कि काम दे अर्थ ही बन गए वासना, काम दे अर्थ ही बन गए रूप। रूपे कामे दोस्ती, रूपे कामे दोस्ती, भुखे सादे गंड। जैसे स्वाद सारा भुख दे च है, इतना भोजन दे च नहीं, तो वासना रूप ते ही आकर्षित होंदी है, रूप दी तरफ खिंच दिए। तो काम ते रूप दी दोस्ती बन गई। एक शायर ने बड़ा सुंदर लिखे है, वो कहिंदा है जब हुसन नहीं तो इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गिले दीवार पर शैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पर शैदा नहीं होता। दीवार देते जो फुल बने होया है, कोई बुलबुल उसते नगमे नहीं अलापती, नहीं चहचहांदी, नहीं गीत गांदी, क्योंकि तस्वीर है, हुसन दी तस्वीर है, हुसन नहीं, रूप दी छाया है, रूप नहीं। तो पंछी सियाणे ने छाया ते आशिक नहीं आंदे, छाया ते फिरा नहीं आंदे, रूप ते स्वप्न ते। मनुख ते किसे किसे थां पंछियां तो भी गया गुजरिया है, इते तस्वीरां ते भी मोहित है, चाहे चलदी फिरदी तस्वीर है जैसे कि फिल्मां, चाहे पत्थर दे ते उकरियां या तस्वीरां ने, चाहे तरह तरह दी इल्मे मसूरी है, चित्रकारी है, मनुख ते उस ते भी फिदा होया पे। यही कारण है कि फैश तस्वीरां वालियां मैगजीन्स बहुत बिक रहे ने, बहुत पढ़े जा रहे ने, और उन्हां तस्वीरां नूं मनुख देखदा है, खूब देखदा है। दूर क्यों जाओ, मनुख दा ए वेग किसे समय इतनी शिखरता ते पहुंचया सी कि जमीन दे मंदिर भी काम दे बने, राम दे नहीं, जैसे के खजुराहे दे मंदिर, कोणार्क दे मंदिर, जगन्नाथ पुरी दियां पत्थर ते उकरियां तस्वीरां मूर्तियां। हैरानगी है, खजुराहे नूं देखण लई देश विदेश तो भीड़ पहुंचती है, और छोटा जिहा कस्बा, लेकिन चारों पासे फाइव स्टार होटल भी ने, एयरपोर्ट भी है, खूब जांदे ने
सैलानी और सैकड़े एकड़ विच फैले हुए इना मंदरां नू देखण लई। की है इना मंदरां विच कोई कथा हो रही है, कीर्तन हो रहा है, किसे संत दी मूर्ति दे दर्शन करन जा रहे ने, किसे अवतार दे चित्र दे दर्शन करन जा रहे ने, कता ही नहीं। उत्थे जो मूर्तियां ने वो काम दिया मूर्तियां ने, वासना दिया मूर्तियां ने, मनुख वेखन जा रहे है, मनुख दे अंदर दी वासना इसनु मजबूर कर रही है। एक कोणार्क जांदा है, जगन्नाथ पुरी दियां बार दियां तस्वीरां देखदा है और खजुराहे दे मंदर देखदा है। इस तो स्पष्ट होंदा है कि मनुख दे वासना दे वेग ने मंदिर भी बनाए ते वासना दे बनाए, प्रार्थना दे नहीं, मंदिर भी बनाए ते काम दे बनाए, राम दे नहीं। हुन इस सदी विच इस युग विच ते दिल दिमाग दते एक काम ही छा गया, हर पासे इस दी विचार, इस दी प्रदर्शनी अखबारां विच, शायरी विच, फिल्मां विच, साहित्य विच, तरह तरह दियां तस्वीरां विच, और चारों पासे इतना काम दा प्रगटावा होवे, प्रचार होवे, तो कोई ध्यानी कोई साधक राम दा चिंतन करे इस युग विच कठिनाई है, अगर वो कर सके तो महान है। भगत रविदास जी महाराज नु इत्थे ही दुख तो के कहना पिया, तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। इसी काम दे हड़ देच बह गया समुच्चा मगरिब, यूरोप, अमेरिका, कनाडा और बदकिस्मती है ये भारत जो सदियों तक धार्मिक देश रहा है और धर्म दी महिमा इत्थे बड़ी प्रगाढ़ रही है। अफसोस ए भी अज यूरोप दी नकल कर, मगरब दी नकल कर, पच्छम दी नकल कर, काम दे वेग दिच बह गया, काम दे दलदल दिच फस गया। और यही कारण है कि राम दा चिंतन घटदा गया घटदा गया। हुन मोची ते कदम कदम ते बैठे मिलदे ने जुतियां गंढण वाले, किसे रविदास दे दर्शन नहीं आंदे। कपड़े बुनण वाले ते बहुत मिलदे ने, कबीर दे दर्शन नहीं आंदे। नाई ते बहुते ने, सैण किथे। कपड़ियां नू रंगण वाले ते बहुते ने, पर नामदेव किथे। चेतने महाप्रभु ए किथे। हुन कोई मीरा एक तारा लेके भजन दिश डुबी होई नहीं दिखाई देंदी। हुन कोई माता भाग कौर सुरबीरता दी मूर्ति नहीं दिखाई देंदी। समो जगत इसे ही वैण देच वह तो रहा है, इसे ही हड़ देच वह तो रहा है। और धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक देच इसी वेग दा जिक्र कर रहे ने। हे कामं नरक विश्रामं

घूम दिए रुक दिया के पुरुष थे, तो पुरुष बन गया कामदेव। एक कामदेव एक कामनी, स्त्री ते पुरुष दा ए मिलन, कामना दी मणि ते कामदेव दा मिलन होके रह गया। जदके इते होना चाहिदा सी ज्ञान दा मिलन, भक्ति दा मिला मिलन। स्त्री नू ज्ञान मिलदा, पुरुष नू भक्ति मिलदी, पर नहीं, पुरुष नू मिली कामनी, स्त्री नू मिलिया कामदेव। ज्ञान देव रह गया, भक्ति देवी रह गई, भक्ति दी मणि रह गई। पुरुष दी चमक दमक मत्थे ते उस दिन प्रगट होवेगी जिस दिन भक्ति दी मणि इसते मस्तक दे चमके, और स्त्री दा मस्तक उस दिन चमकेगा जिस दिन ज्ञान दा प्रकाश, ज्ञान दा सूरज उस दे मकसद मस्तक पे जो है चमके। और स्त्री पुरुष दा मेल ए ज्ञान ते भक्ति दा मेल ना होके इति कामना दी मणि ते कामदेव दा मेल होके रह गया। परिवारक रिश्ते ए ज्ञान ते भक्ति दे रिश्ते ना रह गए। इति काम देव ते कामना दी मणि। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ते ऐसा भी प्रमाण कर देने, छले कनक कामनी, छले आ गया मनुख दे, धोखा खा गया मनुख कामनी तो कनक तो, जिंदगी बर्बाद हो गई, जीवन भ्रष्ट होके जह रह गया। भक्ति दी मणि चमकनी चाहिदी सी, काम मणि चमक रही है, काम मणि ही ज्ञान दा प्रकाश मस्तक ते होना चाहिदा सी, काम देव चमक रहा है। और ए मिलन अगर काम देव ते कामणी दा होया और जीवन भर ऐसा होया, तो इस तो जो औलाद पैदा होवेगी वो कोई ऋषि मुनि दार्शनिक संत भगत ज्ञानी नहीं होवेगी। वो औलाद कैसी होवेगी? धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं।

इस दौर दे इस काम ही युग दे छम कैयत कल युग के काम ही जो संतान पैदा हो रही है कली अंदर नान का जिन्ना दा अवतार जिन भूत पैदा हो रहे हैं पुत जनूरा धी जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदा पुत ते जिन भूत है तेवी जिन भूत है कोई नीरा नहीं पैदा हो रही माता भाग कोर नहीं लैला पैदा हो रही है कोई कबीर कोई रविदास कोई भाई मनी सिंह कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे मजनू पैदा हो क्यों मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके दोहां दा मिलन पहले शरीरक होवे सहजे सहजे ए जद शरीरक तल तो उच्चे उठन उस समय इना दे घर औलाद आवे भगत आणगे दार्शनिक आणगे विज्ञानक आणगे संत आणगे पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके वासना तो उच्च ही नहीं उठ सके

और इसे दलदल में फंसे रहे तो औलाद आएगी जिन्ते भूत जिन्नाते भूता नाल ए युग ए संसार भर गया है। जिन भूत जो अदृश्य रूप दे पहले कर्म करते सन दृश्यमान रूप दिच ए मनुख आज कर रहे हैं। जिन भूतां नु काबू करना औखा सी अजो की औलाद नु काबू करना औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। ए कॉलेज स्कूलां दियां कुर्सियां तोड़ रहे ने, उस्तादां नु मार रहे ने, तरह तरह के कुकर्म कर रहे ने, और किधरे भी सील नहीं संयम नहीं। उसका मूल कारण है मां बाप का जीवन प्रार्थना नहीं बन सकिया, वासना ही बनिया रहा। मां बाप का जीवन राममय नहीं हो सकिया, सिर्फ काममय होके रह गया। पातशाह कहते ने रन्ना होइया बोधियां पुरख होए सयाद सील संजम सुच भन्नी खाना खाज अखाज। रन्ना होइया बोधियां स्त्रियां बहुत चंचल बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप दी प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नु देखना यही उन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहंदे ने वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए रूप देख देख नारी। जिथे वेद पढ़दियां पढ़दियां पंडित इसी जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसी जी खप के रह गई। रूप पेख पेख नारी, स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है पर महसूस कर दी हां हूं ठीक है, फिर विखाण लई निकलदी है। रूप दी प्रदर्शनी शरीर दी प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक वद्दा जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटदा जाएगा। मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकदा कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारां दे और नगन होके भी नच सकती है थिएटरां दे। हां वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई होवे, रूप नु वेखना ते विखाणा यही जिंदगी दा लक्ष्य होवे तो फिर शरीर तो कपड़ा हटदा जाएगा हटदा जाएगा हटदा जाएगा। अर्ध नगन और फिर अल्फ नगन इस तरह उसकी प्रदर्शनी होगी। पुरख होए सयाद, सयाद शब्द फारसी का है, इसके अर्थ ने शिकारी, पुरुष शिकारी है, इसे शिकार की तलाश है, इसकी खोज यही है। कोई नगन शरीर देखण न मिले, नहीं मिल सकया, इतने पैसे नहीं कि थिएटर दे जाके किसी नगन स्त्री दे नृत्य नु वेखे, और अजे इतनी धनाडा दी महफिल भी इसनु नसीब ना होवे जिथे अर्ध नगन शरीर आम ने। तो फिर अर्ध नगन शरीर जो फिल्मां दे च ने तस्वीरां दे च ने मूर्तियां दे च ने ओह वेखो। यही कारण है कि नंगियां तस्वीरां खूब बिक रहीआं ने। फैश नावल जिनसियात नाल भरीआं होईआं कहानियां और जिनसी तस्वीरां नाल भरे हुए मैगजीन खूब बिक रहे हैं, खूब पढ़े जा रहे हैं, खूब पढ़ाए जा रहे हैं। मनुख मानो बीमार होके रह गया है, वासना दा बीमार, और इसने सहजे सहजे हर माहौल नूं दूषित कीता है। इस वासना नूं प्रार्थना किवें बनाईए,
प्रार्थना तो मिलेगा सदीवी सुख, वासना तो मिलता है बिल्कुल मामूली सुख। निमक काम स्वाद कारण पानी, कोट जन्म दुख पावे, कोट दिनस दुख पावे। महाराज इस श्लोक विच भी कहंदे ने, अल्प सुख अवित चंचल, ऊंच नीच समावणे, बहुत थोड़ा जिहा सुख। और तू ऐसा चंचल कर देना, चाहे कोई महान मनुख है ते चाहे कोई तुच्छ, इसे ही अल्प सुख विच फस के रह जांदा है, बचाओ। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ढंग दसते ने।

तान कर धर्म वधे नित रसना ते प्रभु दा नाम ले आइए उस सच नु सत नु रटन करिए उस विच मन जोड़िए धर्म पैदा हो जाता है। धर्म दा बूटा अंकुरित हो जाता है और परोपकार कीते हैं दान पुन कीते हैं धर्म दा ए बूटा सहजे सहजे वधदा है उठदा है। स्थित धर्म खिमा के संगा धर्म दा बूटा क्षमा दे आसरे दे टिकिया रहिंदा है। कोमल बूटे गिर ना जान ढह ना जान तूफानी हवावां उन्हां दियां जड़ां ना पुट देन तो सहारा देना पैंदा है कोमल बूटियां नूं किसे सोटी दा किसे दीवार दा। तो क्षमा दी सोटी नाल क्षमा दे सहारे खिमा दे सहारे ए धर्म दा बूटा रोज रोज वद्दा है उच्चा हुंदा है उच्चा हुंदा है। स्थिते धर्म खिमा के संगा धर्म क्रोध कर होत विभंगा छिन मात्र क्रोध कर दिया धर्म दा बूटा जल के खाक हो जाता है। क्रोध ऐसी अगन पता नहीं कितने दिनों की तपस्या नूं जला के रख देंदी है कितने दिनों की साधना कितने दिनों का परोपकार। वाकई अगर एक बूटा छे महीने साल सिंच के वड्डा कीता है बस एक चिंगारी उसनु भस्म कर सकती है। क्रोध दी छणक अगन छोटी जी अग्नि कीते किताए पैदा होए धर्म नु नष्ट करके रख देंदी। क्रोध वास्तविक मूर्खता दी बुनियाद ते खड़ा होंदा है। क्रोधी स्याणा नहीं हो सकता। क्रोध बारे कुछ होर जानकारियां इस तरह दियां ने। जर्मन दी गल है एक मां बच्चा ले आई है डॉक्टर को मुर्दा रोंदी हुई चीखदी हुई। डॉक्टर भी हैरान है जब मर ही चुके है ते मेरे को लेने का मतलब जब खत्म ही हो गया है फिर ये रोंदी हुई इत्थे क्यों ले आई है। डॉक्टर कहिंदा ये ते मुर्दा है रोंदी हुई बिलखदी हुई ममता दी मारी मांग कह रही है। हां मर गया ये ते ठीक है पर मैं इस वास्ते ले आई है क्यों मरया है किवें मरया है मैनू कुछ कारण नहीं दिखाई देंदा। अच्छा तो इस वास्ते ले आई है। डॉक्टर उस बच्चे नु वेखदा है अपनी सियाणप नाल जांच पड़ताल करदा है मां नु पुछदा है ए दस किवें गुजरिया कदों गुजरिया। बस मेरी गोद देसी मेरा दुध पींदियां ही पींदियां ए सिर सुट बैठा है खत्म हो गया। तो मतलब होया तेरा दुध पींदियां पींदियां मर गया। क्या दसेंगी जिस वक्त तू इस बच्चे नु दुध पिला रही सी तेरी मनोदशा की सी तेरी मानसिक हालत की सी। ये मां कहंदी है मेरा ते पति नाल झगड़ा चल रहा सी बहुत उच्ची बोलचाल चल रही सी ये बच्चा विचकार रोन लग पया मैं इसनु दुध पिलाण लग पई
ਪਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਉਬਲੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਬਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਗੰਢਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਪਿਵਸਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਈ। ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਰੀਰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੂਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮ ਭਗਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਦਸ ਬੈਰਾਗਨ ਮੋਹੇ ਬਸ ਕੀਨੀ ਪੰਚੋਂ ਕਾ ਮਿਟਨਾ ਸੱਤਰ ਦੋਏ ਭਰੇ।

0: चारों
1: सुन ए मोराजन, मेरी करामात देख। मैं जिस हृदय च अपना पैर रख देना, वो अपना बिगड़दा होया कम भी नहीं देख सकेगा कि कितना बिगड़ रहा है, मेरा कितना नाश हो रहा है। वो अपनी आत्मा की आवाज भी नहीं सुन सकेगा। ऐ मोराजन, तू मैनू भेज के देख। जिंदगी भर जो पड़िया होवेगा, सालां बदी जो पड़िया होवेगा, एक छिन विच मैं बुला के रख देंगा, अनपढ़ बना के रख देंगा। क्रोध विच सड़िया होया मनुख ते अनपढ़ लगता है, क्रोध विच जलिया होया मनुख ते मूढ़ लगता है, क्रोधी ते शैतान लगता है। नहीं महसूस होता कि पढ़ा लिखा होगा, ये दार्शनिक होगा, ये फिलोसफर होगा, ये चातर होगा। पढ़ो जितनो खिन माए बेसारो, जीवन भर जो इसने पढ़े है, मैं एक सैकंड दे भुला के रख देंगा, एक छिन दे भुला के रख देंगा। क्रोध दी ए महान परबल शक्ति जिसनु धन गुरु अर्जन देव जी महाराज अपने पावन पवित्र वाक संस्कृति श्लोक इस तरह बयान करते हैं।

0: कदंच करुणा न उपरजते।
1: हे क्लेश दी जड़, झगड़े दा मूल क्रोध, झगड़ा चाहे परिवार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे बाजार दे चाहे मूल क्रोध है, झगड़ा चाहे सारे शहर दे चाहे कौम दे चाहे मूल क्रोध है, ते झगड़ा चाहे सारे संसार दे चाहे विश्व युद्ध है, वर्ल्ड वार है, मूल देश ते क्रोध है। हे झगड़े दी जड़, हे क्लेश दा मूल,
0: हे कल मूल क्रोधं कदंच

करोत जथा मरकटे। हे क्रोध तेरा वासा हुंदा है विषयी मनुखां दे अंदर, जिन्हां दी वासना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी कामना अतृप्त रह गई है, जिन्हां दी तृष्णा अतृप्त रह गई है, जिन्हां दीआं इच्छावां अतृप्त रह गईआं ने, जिन्हां दीआं कामनावां अतृप्त रह गईआं ने, तेरा वासा उत्थे ही आउंदा है। अतृप्त वासना क्रोध बनदी है, अतृप्त वासना गिले बनदी है, अतृप्त वासना शिकवे बनदी है, अतृप्त वासना असंतुष्टि नूं जन्म देंदी है, और ये सब कुछ फिर क्रोध नूं बर्बाद करदा है। ये क्रोध तेरा वासा है विषयी जीवां दे अंदर। नर्तन करोत जथा मरकटे। तू जिस दे अंदर वासा करदा है उसनू इस तरह नचांदा है जिवें मदारी बंदर नू नचांदा है। ए क्रोध तू बंदर दी तरह उस मनुख नू नचांदा है जिस दे अंदर तू प्रवेश कर जांदा है। अनेक सासं

0: अकर्णं करोत् अखादिं खादिं असाजं साज समज्जया त्राहे त्राहे शरण स्वामी विज्ञप्त नानक हर नर हरे।
1: धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज दी दित्ती हुई तरतीब विच प्रथम मोह, फिर काम, फिर क्रोध ते फिर ए लोभ। मनुख दियां बुनियादी कमजोरियां विच्चों एक परबल कमजोरी लोभ दी उत्पत्ति होंदी है लैण दी भावना तो। हर वक्त लैण दी भावना अंदर चले, लैणा है लैणा है लैणा है। मैं माता कोलो लैणा है, पिता कोलो लैणा है, भरावां कोल लैणा है, पत्नी कोलो लैणा है, बच्चियां कोलो लैणा है, पड़ोसी कोलो लैणा है, संसार कोलो लैणा है, निरंकार को लैणा है, धन लैणा है, सुख लैणा है, संपदा लैणी है, जस लैणा है, प्रभुता लैणी है, मान लैणा है, सम्मान लैणा है। हर वक्त ए लैण दी बुक, ए लैण दी तरफ और ए लैण दी अठे पैर बनी हुई बिरती, बस यही लोभ है। एक ऐसी गंढ नू जन्म देंदी है, इसे दा नाम है लोभ। उम्र दे नाल नाल ए लोभ वद्दा है वद्दा है, लैण दी बिरती वद्दी है, बड़ी प्रबल वद्दी है। और मनुख प्रबल लोभी हो जाता है। लोभ मनुख नु पाप ते मजबूर करता है। जब लैण दी बिरती ले नहीं सकती तो अतृप्त लैण दी बिरती ए लोभ खून भी सोचता है, चुराण भी सोचता है। ये सोच पाप है, पर जब ये लैण दी बिरती बहुत प्रबल हो जाए, ये सोचनी शिखर ते पहुंच जाए, पाप प्रबल हो जाए, तो जब ये किधरे खो लेंदा है, चुरा लेंदा है, बेईमानी कर लेंदा है, तो ये अपराध बन जाता है। बहुत वड्डी संभावना है लोभी दे अपराधी होने दी। और हमेशा लोभियां तो ही एक दूजे दे धन नो संपदा नो खतरा है। अगर लोभ व्यापक होवे हर एक दे हृदय च और बड़ा प्रबल, तो हर एक दा धन हर एक दी संपदा खतरे दी समझा, किधरे चुरा ली जाएगी, किधरे खो ली जाएगी, किधरे लुट ली जाएगी। लैण दी बिरती लोभ, लोभ विच खोना लुटेरा, लैण दी बिरती लोभ, लोभ लुटेरा, लोभ ही लुटेरा हो ही जाएगा। और ये लाजमी सही ढंग नाल, गुप्त ढंग नाल, प्रगट ढंग नाल खून भी सोचेगा और ये पापी हो जाएगा। देन दी बिरती मैं देना है, किसे नु सुख देना है, किसे नु धन देना है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਪਦਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਪੁੰਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸੇ ਪਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਦਾਨ। ਔਰ ਪਰਬਲ ਦਾਨੀ ਜੋ ਹਰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੋਚੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤੌਫੀਕ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਆਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਕਤ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਉਚਾਰਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਦਾਨ। ਪੁਨੀਤ ਕੌਣ? ਦਾਨੀ। ਦਾਨੀ ਕੌਣ? ਪੁਨੀਤ। ਪਾਪੀ ਕੌਣ? ਲੋਭੀ। ਲੋਭੀ ਕੌਣ? ਪਾਪੀ। ਪਾਪ ਲੋਭ, ਪਾਪ ਲੋਭ, ਲੋਭ ਪਾਪ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ, ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹਰ ਵਕਤ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਕੋਈ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਠਠਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਸਤਰ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਅੰਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਧਨ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਕਲਾ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਲਾ ਸਿਖਾ ਦੇਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲਾ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਸੂਝ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਸਮਝ ਦੇ ਦੇਈਏ। ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਪਰਬਲ ਬਿਰਤੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੁਨੀਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਨੀਤ ਦਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਦਾਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾਨ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਦਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਭ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਲੈਣਾ ਚੇਤੇ ਆਏਗਾ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੁੜਨਾ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜੁੜ ਸਕਦਾ, ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਿਆਨੀ ਲਈ ਦਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਔਰ ਦਾਨ ਖੜਾ ਹੈ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੇ ਭਗਤ ਭਾਏ, ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ ਤਾਹੇ ਤੇ ਗੁਰਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੇਤ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਜੁੜੇਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਵਰਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੂੰਕਿ ਉਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲ ਬਿਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਭੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਫਿਰ ਕੁਛ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਲੱਗ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਕ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਤਾਂ ਧਰਮ ਛੋੜਿਆ, ਮਲੇਛ ਭਾਖਿਆ ਗਈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕੋ ਵਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਧਰਮ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਰਨ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਉਹਨੇ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਇੱਕ ਵਰਨ ਹੋਈ, ਧਰਮ ਕੀ ਗਤ ਰਹੀ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਕੋ ਵਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਹੜੇ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਾਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਈਅਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਐਸਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਇਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਵੇਸ਼ਭੂਸ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਮਨੋਬਿਰਤੀ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਸੋਚੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਤੇ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਧਰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਕੌਣ? ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖੂਨ ਅਨਿਆਏ ਵੇਖ ਕੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਖੂਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦਾ ਖੂਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਸਦਾ ਖੂਨ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੂਰਬੀਰ? ਜੋ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਦੀਨ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਦੀਨਨ ਕੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਸੰਤ ਉਬਾਰ ਗਨੀ ਮਨਗਾਰੇ। ਦੀਨ ਗਰੀਬ ਨਿਮਾਣਾ ਨਿਤਾਣਾ, ਜੋ ਦੀਨ ਦੀ बां पकड़ लवे, इति परमात्मा वाला गुण है, इति ईश्वरी स्वभाव है, इति स्वाई ईश्वरी है। दीन दे पक्ष दे खड़ा हो जाए, ताकतवर दे पक्ष दे ते सारी दुनिया खड़ा होंदी है, शक्तिशाली मनुख दे पक्ष दे ते सारे ही आ जांदे ने। कमजोर दा पक्ष कोई कमजोर नहीं ले सकदा, कोई सूरबीर ले सकदा है। तो सूरबीर दे नाल धर्म चलदा है, क्यों? सूरबीर ते कमजोर दी रक्षा दी खातर अपनी जान भी दे देंदा है। देखदे हां असीं इतिहास नूं, सूरबीर किस नूं कहंदे ने? कमजोर दा पक लवे। कश्मीर दा ब्राह्मण कमजोर सी, गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने बांह पकड़ ली, ब्राह्मणा दियां गर्दना बच गईयां, क्योंकि किसे बहादुर ने अपनी गर्दन चांदनी चौक दे कटवा दित्ती। ब्राह्मणा दे मस्तक दे चमकदे हुए तिलक लिलाट कर उठे, चमकन लग पे, क्योंकि किसे ने अपना खून चांदनी चौक दे डोल दिता। बच गई ब्राह्मण दी जनेऊ दी डोरी, क्योंकि किसे ने इसी डोरी दी रक्षा ले अपने प्राणा दी डोरी तोड़ दित्ती। धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी, महादानी महादानी। जो कमजोर दे पक्ष दे खड़ा हो जाए ते कुर्बान हो जाए, सूरवीरता बहादुरी बड़ी बहादुरी। तो क्षत्रिय नाल धर्म चलदा है, उहदा ते सुभाव परमात्मा वर्गा हुंदा है, उह ते दीन दा पक्ष लैंदा है, गरीब दा पक्ष लैंदा है। परमात्मा नूं गरीब निवाज आख्या गया है, दीना दी रक्षा करन वाला आख्या गया है। तो इह सुभाव जिस मनुख दे अंदर पैदा हो जांदा है, उह ते परमात्मा वर्गा है, उह ते ईश्वर वर्गा है। तो खत्री दे नाल धर्म चलदा है। शूदर ए वरन अपने आप विच खास वरन है। इस वरन दा मनुख, इस स्वभाव दा मनुख बोझल भारी सेवा करके अध्यात्मक खुशी माणदा है। किसे दे कपड़े धो के, किसे नूं पानी पिला के, किसे थके हुए दी मुठी चापी करके, झूठे भांडे मांज के, धर्म सथलों दे तप्पड़ झाड़ के, बुहारी दे के, या धर्म मंदरां नूं बनाण विच टोकरी चुकनी, पत्थर चुकने, इट्टां चुकनियां, इह भारी खुशी प्राप्त करदा है भारी भरकम सेवा करके, बोझल सेवा करके। सफाई करनी है किसे दे घर दी, रस्ते दी, साफ करने ने किसी दे कपड़े, किसी ने इशनान कराना है, किसी मरीज दी तीमारदारी करनी है, किसी दे कपड़े धोने ने, भारी सेवा करनी है, भरकम सेवा करनी है, और इस सेवा विच उन्हों रूहानी खुशी मिले, इस सेवा करके इस तरह जुड़े जिमें कोई ब्रह्म दा चिंतन करन वाला ब्राह्मण जुड़दा है, जिमें कोई कमजोर दी बां पकड़न वाला खत्री प्रभु नाल जुड़दा है। इस तरह ही भारी सेवा करके, बोझल सेवा करके अध्यात्म खुशी मानन वाला प्रभु नाल जुड़दा है, शूदर कहलांदा है। तो शूदर दे नाल धर्म चलदा है। इस तरह दी बोझल सेवा करन वाले मनुखां नूं शायद ब्रह्म दा चिंतन रूहानी खुशी नहीं देंदा, ते चिंतन करना उना दे वस दी गल भी नहीं, इतनी शक्ति भी नहीं। खून दे चितना उछाल उबाल ए भी नहीं कि कमजोर दी खातर लड़े, उदे पक्ष दे खड़ा होए, पर हर एक दी सेवा कर सकदा है, धर्म मंदरां दी सेवा कर सकदा है, धार्मिक मनुखां दी सेवा कर सकदा है, मरीजां दी सेवा कर सकदा है, और बड़ी बोझल सेवा कर सकदा है, भारी सेवा कर सकदा है। इस तरह दे शूदर दे नाल उस दी सेवा दे सिदके उहदे नाल परमात्मा चलदा है, ईश्वर चलदा है। शूदर कोल परमात्मा बैठदा है, शूदर दे नाल परमात्मा चलदा है, शूदर दे अंग संग होंदा है परमात्मा। तो शूदर दे नाल धर्म चलदा है, खत्री दे नाल धर्म चलदा है, ब्राह्मण दे नाल धर्म चलदा है, ऐसा केड़ा वर्ण है जिस बारे धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान कर रहे ने, श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही। सारी सृष्टि इक्को वर्ण दी हो गई है, इक्को वर्ण विच आ गई है, धर्म नहीं चल रहा। अजोकी मनुखता दे नाल राजनीति चल रही है, कारोबार चल रहा है, परिवार चल रहा है, समाज चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा। बाकी तो सब कुछ चल रहा है मनुख नाल, लेकिन धर्म नहीं चल रहा तो खत्म हो गए ब्राह्मण, कोई टामा टामा, खत्म हो गए खत्री, कोई विरला, खत्म हो गए शूदर, कोई एकद, भर गई पृथ्वी वैशानार वैश, सारी सृष्टि वैश हो गई। वैश केवल सौदेबाजी जानता है, वैश हर वक्त बाजार दे च है, वो जद बाजार दे च है तो बाजार दे च है, पर वो जद मंदिर दे च है तां भी बाजार दे च है, जद वो परिवार दे च बैठा है तां भी बाजार दे च है, पर जद वो गुरुद्वारे बैठा है तां भी बाजार दे च है। वैश वेचना है, वेचना है, वेचना है, छोटा मोटा साजो समान या वड्डा साजो समान वेच के जो अपनी उपजीविका चलांदे ने, ए वैश नहीं, इते किरत है, इते धंधा है। वैश बेचनी है अपनी इज्जत अगर मुल मिले, वेचना है अपना ईमान अगर पूरा मिल मिले, पूरी कीमत मिले। बेचना है देश, बेचनी है कौम अगर पूरा मुल मिले। जो बेचण दी सोचदा रहिंदा है वो वैश है, और जो बेच देण दे सफल हो जांदा है वो सफल वैश है। वैश दे नाल धर्म चलदा नहीं, क्योंकि वैश ते धर्म नूं भी बेचदा है। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। ठीक है शायर दा तखयल, खुदा ते वैश दे हाथ च नहीं आएगा, पर जे किधरे आ जाए ते वैश ने खुदा दी भी बोली लानी है, उसनूं भी बेचना है। वैश लोभी आंदा है, लोभी पापी होंदा है, वैश लोभी होंदा है, लोभी पुनीत नहीं होंदा, वैश लोभी होंदा है, लोभी सब कुछ बेचना चाहता है, बदले विच दुगना तिगना लेना चाहता है, मुल मिले कौम बेचनी है, इज्जत बेचनी है, असमत बेचनी है, ईमान बेचना है, धर्म बेचना है, सब कुछ बेचना है। वैश शब्द ते उर्दू फारसी दा है, बाजार विच बैठ के जिहड़ी स्त्री अपनी असमत बेचदी है उहदे लई शब्द है वैश्या। वैश्या सिर्फ असमत बेचती है, और वाकई असमत बिक गई तो सब कुछ बिक जाता है। कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देंदा है, कोई अपनी असमत बेच के सब कुछ बेच देंदी है। इसनु मैं फिर दोहरावा, कोई सब कुछ बेच के अपनी असमत बेच देंदा है, कोई असमत बेच के अपना सब कुछ बेच देंदी है। वैश वैशिया दोवे निकट ने, एक ही सिंहासन ते बैठने। कला बेचनी है, ज्ञान बेचना है, धर्म बेचना है, ईमान बेचना है, कथा बेचनी है, कीर्तन बेचना है। समा लंघ गया जब नजराने हैं, पेट आंदे सन, पेटा आंदी सी, नहीं मुल चाहिदा है। तो जब मुल चाहिदा है तो ज्ञान बिक गया, जब मुल चाहिदा है तो कीर्तन बिक गया, जब मुल चाहिदा है तो कथा बिक गई, जब मुल चाहिदा है तो धर्म बिक गया, सेवा बिक गई, ईमान बिक गया। मुल चाहिदा है, और जिसनु वड्डा मुल चाहिदा है, बेच देगा इज्जत, बेच देगा असमत, बेच देगा शराफत, बेच देगा अपना विश्वास, सब कुछ बेचेगा। वैश नाल धर्म नहीं चलता। श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई, धर्म की गत रही। अफसोस नाल धन गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे ने, सारी सृष्टि इंज कह लो बहु गिणती देच वैश हो गई है, धर्म व्यापक पद्धर ते नहीं चल रहा। ओया किसे एक कद मनुख नाल चल रहा है, हजारां च लखां च कोई एक कद, तो ये कोई बहुत गिणती नहीं। सारा संसार लोभी हो गया है, लोभी धार्मिक नहीं हो सकता, लोभी पुनीत नहीं हो सकता, लोभी पापी हो सकता है, पुनीत नहीं हो सकता, दानी पुनीत हो सकता है, लोभी पुनीत नहीं हो सकता। लोभी ते पापी है, दानी पुनीत है, लोभी पापी है। तो पाप व्यापक हो गया, पाप छा गया, पाप ग्रासी पृथ्वी, धौल खड़ा धर हेठ पुकारा। जब पापियां नाल धरती भर जांदी है, भाव लोभियां नाल भर जांदी है, तो एक दफा ते जमीन दे जर्रे भी पुकार उठदे ने, हे प्रभु रहमत कर, बख्शिश कर, पापी ही पापी, पापी ही पापी। सब कुछ बेचण लई तैयार ने, और सब कुछ खरीदण दे खरीदार भी मौजूद ने। बाजार बन गया है सारा संसार, बाजार बन गए मंदिर, बाजार बन गए धर्म सतल, बाजार बन गए तीरथ। सनातन मत दा सिरमौर तीरथ बनारस शिवा ने वसाई सी, एक महान योगी ने, एक महान तपीश्वर ने। तपीश्वर पैदा होवन, संत पैदा होवन, जोगी पैदा होवन, ध्यानी पैदा होवन, ज्ञानी पैदा होवन, ये नगरी वसाई। पर इस नगरी विच लोभी आ गए, लोभी जिथे कठे हो जान, लोभी लंपट आंदा है, ठग आंदा है। लोभी दे अंदर अनेकां लहरां चल दिया ने लैण दिया, लिहाजा लोभी हर पासे लंपट पड़ा फैलांदा है। तदी ते मेरे पातशाह ने कहा, हे उभा लंपट संग सिर मोरे, अनक लहरी कलोलते। लोभी स्वयं भ्रष्ट होंदा है, सब कुछ नु भ्रष्ट करके रख देंदा है। लोभी तीर्थां नु मंदिरां नु बाजार बना के रख देंदा है, और बाजार विच ते ठगी चलदी है। बाजार ते ठगी दा चोली دامن دا جو ہے ساتھ ہے. یہ لوبھ اس دے کارن کر کے جیب پتہ نہیں کتنی تھاواں تے بھرمدا ہے, بھٹکدا ہے, اور اس دا من ڈولدا ہے اور ہر جگہ نوں برشٹ کردا ہے. ہر وقت لین دی برتی, لین دی برتی, لین دی برتی. لوبھی دے نال ہر وقت بازار چلدا ہے, بازار وچ منک کچھ لین لئی جاندا ہے. لیکن لوبھی نو ایسا بازار چاہیدا ہے, لینا تے سب کچھ ہے اور سب دے کولو لینا ہے, بدلے وچ دینا کچھ بھی نہیں, ایسا بازار چاہیدا ہے. اس طرح دا بازار لوبھی ہر وقت اپنی کلپنا دی دنیا وچ بنائی رکھدا ہے. لہذا لوبھی دے نال ہی بازار جاندا ہے. لوبھی جتھے بیٹھا ہے اتھے ہی بازار ہے, چاہے وہ ہری مندر بیٹھا ہے, چاہے گردوارے بیٹھا ہے, چاہے خانہ کعبہ وچ بیٹھا ہے, چاہے چرچ دے وچ بیٹھا ہے. لوبھی تاں بازار وچ بیٹھا ہے, وہ کدھرے مندر وچ نہیں بیٹھا, وہ کدھرے گردوارے نہیں بیٹھا, کدھرے چرچ تے مسجد وچ نہیں بیٹھا. لوبھی جتھے بھی بیٹھا ہے بازار وچ بیٹھا ہے. لوبھی جدھر چلدا ہے بازار نال چلدا ہے, لوبھی جدھر چلدا ہے ٹھگیاں اس دے نال ہی جو ہے چلدیاں نے. پھر سدگر دیو جی مہاراج اس پاون پوتر سلوک دے انفرمان کر دینے,

है लोभ, हे लोभ, तैनु मित्र दिवी शर्म नहीं, तो मित्र नाल भी ठगी कर दें, तेनु इष्ट तो भी संकोच नहीं, तो इष्ट नाल भी ठगी कर दें, तू संबंधियां तो भी शर्म नहीं खांदा, तो उना नाल भी ठग गया कर दें, उना नु भी धोखा देना है, नच मात पिता तव लज्जया, तेनु मां बाप दी भी लज्जा नहीं, तू ते उना नाल भी ठगी करदा है, तू ते उना नाल भी धोखा करदा है। पातशाह दा फरमान, लोभी का वेसाना की जे जे का पार वसा है, लोभी ते भरोसा औखा है, और आज दे युग दे चूंकि लोभ प्रबल है, प्रधान है, भरोसा उड़दा जा रहा है, उड़ गया है, या किधरे कोई भरोसा करदा है, विश्वासघात होंदा है, उस दे भरोसे नो बहुत वड्डी सट लगदी है। लोभी नू मेरे पातशाह ने कुत्ते नाल कूकर नाल तशबीह दिती है।

भख अभख सब खाए। लोभी ते कुत्ते दी तरह है, हर थां ते मुंह मारना, हर वक्त मुंह मारना, क्रंग दे च मुंह मारना, हड्डी दे जो है मुंह मारना, और दूजे ने मुंह मारना देना, दूजे ते भौंकना, यह लोभी दी मनोबिरती है। इसका एक सुंदर चित्रण धन गुरु नानक देव जी महाराज ने श्री राग दे एक शब्द विच बड़े सुंदर ढंग नाल कीता है। इक स्वान दोए स्वानी नाल।

0: और
1: धान के रूप रहा करतार। हे करतार, धानक हो गया। धानक जो शमशान घाट विच बैठ के उड़ीक कर देने कदों कोई लाश आवे, कफन मिले, पांडे मिलन, पैसे मिलन, कदों कोई लाश आवे, सड़ियां लकड़ियां बिकन, कदों लाश आवे, सानू मेहनताना मिले, साजो समिग्री मिले, जिसदी उपजीविका, जिसदी रोजी, जिसदी उड़ीक किसी दी मौत ते खड़ी है, और जो सवेरे तो लेके शाम तक, रात तक इसे उड़ीक च रवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, कोई मुर्दा आवे, ऐसे मनुख दी रूह भी मुर्दा हो जाती है, ऐसे मनुख दा इखलाक भी मुर्दा हो जाता है, ऐसे मनुख दा आचरण भी मुर्दा हो जाता है। शेख सादी ने एक बड़ी सुंदर कविता, शायरी गुलिस्तान विच कीती है। फरमान है उना दा, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त। मैथो इंसाफ दी गल पुछो, बद बख्त कौन है, बद किस्मत कौन है कि दर राह तश रंज दीगर कस अस्त। जिस दी राहत दूजियां दी रंज ते खड़ी है, जिस दियां खुशियां दूजियां दे रोने ते खड़ियां ने, जो दूजियां दी बर्बादी विचों आबादी लभदा है, जो दूजियां दी मौत विचों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान विचों नफा लभदा है, जो दूजियां दी बेइज्जती विचों इज्जत लभदा है, जो दूजियां दे रोने विचों हासे लभदा है, इते बड़ा बदबख्त, बड़ा बदबख्त। सारा दिन ए उड़ीक होवे, ए सोचनी होवे, मरे किसे घर विच कोई मनुख, मौत होवे किसे दी, खत्म होवे कोई, लाश आवे, मैनू कपड़े मिलन, मैनू साजो समिकरी मिले, मैनू धन मिले, इस तरह दी सोचनी इखलाक दा पतन कर देंदी है। ठीक है, अगर ये पेशा है, धंधा है किसे दा, पर सोचनी विच ना ले आवे, उपजीविका प्रभु ते सुटे, सेवा दे रूप विच करे, सोचे परमात्मा दी तरफों यही मेरी ड्यूटी लगी है, तो ये सारी सेवा करदे होया उदी उपजीविका ते चलेगी, पर उसका इखलाकी पतन नहीं आवेगा, उदी मनोवृत्ति थल्ले नहीं जाएगी। पर ओही सर्वधानक नहीं जो शमशान घाट विच बैठ के सारा दिन मुर्दियां दी उड़ीक करदा है, ते किसे घर विच मौत होवे इसकी उड़ीक करदा है, नहीं, सारा संसार ही लोभियां ने शमशान घाट बना के रख देता है, और खुद बैठा है धानक दी तरह, कोई मरे मैनू कुछ मिले, कोई तबाह होवे मैनू कुछ मिले, मैनू कुछ मिलना चाहिदा है, हुंदा है दूजा तबाह ते होवे, मेरे पल्ले कुछ पैना चाहिदा है, खोया जांदा सब दा ते खोया जान दे हो। इस तरह हर मनुख धानक बन गया, और हर मुल्क ने संसार नू शमशान घाट बना के रख दिता। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस नू इस ढंग नाल भी बयान किया है, एक स्वान दोए स्वानी नाल भलके भौंके सदा बयान। एक कुत्ता दो कुतियां मनुख जैसे सवेरे उठदा है इहदे नाल उठ बैठदियां ने। भौंकदा है कुत्ता भौंकदियां ने इह कुतियां, रात नूं जद सौं जांदा है वक्ती तौर ते इह कुत्ता ते कुतियां शांत होंदियां ने पर होंदियां इस दे कोल ने। जैसे सवेरे उठदा है कुत्ता भी उठ बैठा, कुतियां भी उठ बैठियां, जोर दा भौंकना आरंभ कर दिता। इस भौंकण विच मनुख इतना बेजार होंदा है, मजाल इहदी जबान तो वाहिगुरु निकले, राम निकले, अल्लाह निकले, मजाल इह जपजी साहब पढ़े, इह मंदर दी सुरत लवे गीता पढ़े, या इह नमाज पढ़े, ते कुरान दी तलावत करे, नहीं, मुश्किल है। कौन है कुत्ता? लोभ। कौन ने दो कुतियां? आसा ते तृष्णा। थोड़ा जिहा लोभ कुत्ता चुप होंदा है, आसा ते तृष्णा, तृष्णा जो मिल गया उस दी तृप्ति नहीं, तृष्णा ते आसा, ये दोवें इतनियां जोर दियां भौंकदियां ने कि वक्ती तौर ते चुप कीते उस कुत्ते नूं, उस लोभ नूं नाल भौंकना पैंदा है और पूरी उच्ची आवाज विच भौंकना पैंदा है। तो जब लोभ ऐसा भौंकना शुरू करे, आसा ते तृष्णा भी भौंकण, ये कल्ला मनुख की करे, ये फिर की करदा है? धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, कूड़ छोरा मुठा मुरदार, झूठ दे छुरे नाल मुरदार नू जबा करदा है। मुरदार और झूठ दा छुरा, प्रथम ते समझांगे, जानना चाहांगे मुरदार की है। मुरदार गुरु नानक खुलासा कर दें, बाणी दी व्याख्या बाणी कर दिए, हक पराया नानका उस सुवर उस गाए, गुरु पीर हामा ता भरे जा मुरदार न खाए। पराया हक बस यही मुरदार है। अगर हिंदू है तो गऊ खा रहा है और मुर्दा गऊ, मुस्लिम है तो सुअर खा रहा है मुर्दा सुअर, मरिया होया सुअर। पराया हक इते सुअर खा रहा है मुसलमान, इते गऊ खा रहा है हिंदू। भारत दी मनोत कि गऊ सब तो उत्तम है, ये मनुखी मां दी तरह सोचती है। इसका गर्भकाल का समा भी मनुखी मां दी तरह 10 महीने का है। जैसे डार्विन ने किसी वक्त कहा कि मनुख दी आखरी कड़ी बंदर है, बंदर तो विकास करके मनुख इस शक्ल दे आया है। शरीर दी खोज है, विज्ञान दी खोज, बाहर दी खोज है, पर भारत दा ऋषि मन दी खोज विच संलग्न है। उदी दिलचस्पी मन दी खोज विच है। उन्हें देखिया मनुख दा मन ते गऊ दा मन बड़े निकटवर्ती ने। जैसे डार्विन ने देखिया बंदर दा शरीर ते मनुख दा शरीर बड़ा मेल खांदा है, भारत दे ऋषि ने देखिया गऊ दा मन ते मनुख दा मन बड़े निकटवर्ती ने। हो ना होवे, मनुख दी आखरी कड़ी गऊ है, गऊ मरिए तो फिर मनुख बनिए। इस तरह ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਗਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਕੌਲੇ ਡਾਰਵਨ ਬੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਈ ਗਊ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਗਊ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਐਸੇ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ। ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੂਨ ਹੈ, ਸੂਅਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਾਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸੂਅਰ, ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਭਰ ਬਿਸ਼ਟਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਗਰਦਨ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇਤਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇਤਨੀ ਸਖਤ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਤੜਪੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਤੜਪੇਗਾ, ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੂਅਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੂਅਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਬੋਧ ਜੈਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਊ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ,

गुर पीर हम तांभरे जामुरदार न खाए। पर जब लोभ कुत्ता भौंकदा है, आसा ते त्रिशना दो कुतियां भौंकदियां ने, इस भौंकण विच मनुख ऐसा निढाल आउंदा है, बेहाल आउंदा है, कूड़ छुरा मुठा मुरदा भलके भौंके सदा बेहाल। ये आसा त्रिशना भौंकदियां ने, बेहाल कर देंदियां ने। ये लोभ कुत्ता भौंकदा है, निडाल करके रख देंदा है, एक स्वान दो स्वानी नाल पलके भौंके सदा बयाल, कूड़ छुरा मुठा मुरधार तानक रूप रहा करतार। फिर ये बेहाल होया मनुख झूठ बोल के प्राय हक नू अपना साबित करने की कोशिश करता है, मेरा है मेरा है, झूठ बोलता है जद उसका नहीं है। ये जमीन मेरी है जबकि उसकी नहीं है, ये घर मेरा है जबकि उसका नहीं है, ये धन मेरा है, ये संपदा मेरी है, ये मलकियत मेरी है। इस तरह दूजियां का खुंदा है, दूजियां दी चीज देते वस्तु देते अपनी मोर लांदा है, बेहाल होया ते बेहाल कीता है लोभ ने, बेहाल कीता है आसा ते त्रिशना ने। इस वास्ते मेरे पातशाह कहंदे ने लोभी का कोई भरोसा नहीं, क्योंकि लोभी पापी होंदा है। लोभी तो हर वक्त खतरा है, धन नू संपदा नू जमीन जायदाद नू। और चूंकि व्यापक पद्धर ते लोग प्रधान हो गए, हलकत लोभी हो गई है,

बह बह करे विचार। लब राजा है, लोभ राजा है, पाप वजीर आजम है। वजीर आजम राजे दे नाल है, पाप ते लोभ दे नाल है। जहां लोभ तहां पाप है, जिथे लोभ है उथे पाप है। लब पाप दो राजा में था, ए राजा ते वजीर ने। यही मनुख दे मन दे राज पे कर दें, लोभ पाप लोभ पाप लोभ पाप। फिर महाराज कहते कूड़ होआ सिकदास, चौधरी कौन झूठ कूड़। लोड़ भी नहीं तो देखे मनुख झूठ बोल रहे है, कूड़ बोल रहे है। और व्यापक पद्धर ते झूठ, झूठी राजनीति, झूठे परिवारक बोल, और झूठ ते ही खड़े हो गए धार्मिक बोल। सच दी कोई पहचान नहीं, संत कहलाण दा शौक है। मन कदी प्रभु विच लीन नहीं होया, लेकिन माला दो दो गल विच दो दो हथ विच प्रदर्शनी, नुमाइश झूठ। धर्म दी दुनिया दे झूठ, राजनीति दे झूठ, परिवारिक दुनिया दे झूठ, ये चौधरी है। काम नेब सद पुछिए। जद कदी लोभ नू लोड़ पै जाए, पाप दुबदा विच पै जाए, कूड़ चौधरी किधरे कमजोर होने लग पै, ता काम ने सद पुछिए, इस नायब काम नू कामना नू बुला लिया जांदा है। बह बह करे विचार, लोभ विचार करदा है पाप नाल कूड़ नाल काम नाल। और काम ऐसी विचार दे देंदा है, लोभ भड़क उठता है। झूठ मदद करदा है, पाप अंग संग हो जांदा है। अंधी रैयते ज्ञान विहूणी, भाए भरे मुर्दार। अज्ञानता दा अंधकार है, मनुख नु कुछ भी नहीं पता, कौन मेरे ते राज कर रहे है, और लोभ मुर्दार खान ते मजबूर कर रहे है। लोभी दी तर्ज जिंदगी इस तरह है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, अकरण करोत अखादं खादं असाजं साज समझ्या। लोभी वो कुछ करदा जो नहीं करना चाहिदा, वो खांदा है जो नहीं खाना चाहिदा, और लोभी दा सारा साजो समान मलीन है।

अजित सूर संग्राम अत बल नाम बहुमर्दने गण गंधर्वे देव मानुखं पशुपंखी विमोहने हर करण हारं नमस्कारं शरण नानक जगदीश्वरे ज्ञान दे अथा सागर धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिस विच परमात्मा दे गुण ते उस दियां शक्तियां दा बड़े सोहने ढंग नाल वर्णन है लेकिन नाल नाल मनुख दियां कमजोरियां मनुख दे अवगुण इन्हां दा भी निखेड़ा कीता गया है ताकि मनुख नूं अपनियां कमजोरियां दा पता चल सके। आखिर ऐसा की है जिस करके परमात्मा नहीं मिल रहा, वह गुणा का सागर है, मनुख औगुणा का सागर है। परमात्मा के गुण नहीं गिने जाते, मनुख दे औगुण भी गिनने औखे ही ने। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगुण हमारे, उंज ते अनंत औगुण ने अनंत औगुण ने। पर मूल कमजोरियां मूल औगुण मनुख दे पंज ने, जिन्हां नूं इस तरह गणित दिच लियाया जांदा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी संस्कृति श्लोक इन्हां पंज कमजोरियां नूं बड़े सोहने ढंग नाल उजागर करके मनुख नूं दर्शाउंदियां ने कि तुम इन्हां औगुणां नूं गुणा विच बदलना है। सतगुर मोह तो आरंभ करते ने, मोह मेरा मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल पकड़ हो जाती है, उसे पकड़ नूं कहिंदे ने मोह। जो मेरा नहीं उस नाल मोह भी नहीं, उस नाल पकड़ भी नहीं। जो मेरा है उसनू थोड़ी जी भी चोट लग जाए, खराश लग जाए, टूट भज जाए, तड़प उठती है आत्मा, चीख उठता है मनुख। लेकिन जो मेरा नहीं, जिस विच पकड़ नहीं, जिसका मोह नहीं, चाहे कल बर्बाद होंदा अज हो जाए, कल मिटदा अज मिट जाए, कोई दुख नहीं, कोई संताप नहीं। घर विच एक बच्चा मासूम बच्चा बीमार पै गया है, सारा घर उदास हो गया है। मोह है, पकड़ है, मेरा है। लेकिन किसी देश विच किसी शहर विच महामारी करके सारा शहर बीमार पे है, कोई आ नहीं निकलती। क्यों? उस नाल मोह नहीं, वो मेरा नहीं, उस विच पकड़ नहीं। रत्ती जी वस्तु टूट भज जाए, नुकसान हो जाए, आह निकल जाती है। लेकिन बहुत बड़िया किधरे बर्बादियां हो जान अगर उस विच मोह नहीं, वो मेरा नहीं, तो कोई आह नहीं निकलती, कोई चीख नहीं निकलती,
कोई अफसोस नहीं आता। जो मेरा है, जिस विच मोह है, आज नहीं तो कल संबंध टूटेगा। मेरे खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, या जो मेरा है उसके खत्म होने नाल संबंध टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। चाहे जो मेरा है वो टूटे या मैं टूट जावा, जिस विच मोह है वो खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जावा, रिश्ता तो टूटेगा, संबंध तो टूटेगा। बस इसे टूटण का दुख है, इसे टूटण का गम है। जो मेरा है उस विच मोह है, और जिस विच मोह है उस विच बड़ी भारी पकड़ है, बड़ी भारी पकड़ है। पर कितनी भी पकड़ क्यों ना होवे, हथों ते छुटेगी ये वस्तु, ये हस्ती, जो कुछ भी है, आखिर एक ना एक दिन ते हथों दी पकड़ ढिली होवेगी। जे पकड़ ढिली ना हुई तो जिसनू पकड़े है शायद वही मुर्दा हो जाए, वही ढिला हो जाए। आखिर ते संबंध टूटना है। दुख सारा मनुख दे कोल मोह दा है, मेरे दा है। और जितना मनुख मेरा मेरा करता है उतना ही मोह बच जाता है, और जितना मोह बच जाता है उतना ही दुखी हो जाता है, बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है। ये मोह व्यापक है, किधरे थोड़ा, किधरे बहुत, किधरे बहुत ज्यादा। प्रथम मोह परिवार का, सहजे सहजे जैसे जैसे पता चलता है ये मेरा पिता, बच्चे नू जैसे पता चलता है ये मेरी मां, ये मेरी बहन, ये मेरा भरा, और जितना प्रतीत आंदा है मेरा है मेरा है मेरा है, उतना ही मोह बच जाता है, उतनी ही पकड़ बच जाती है। अगां चल के मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरी धन संपदा, मेरी कुल, मेरी मान मर्यादा, मेरी शक्ति, मेरी ताकत, मेरा स्वप्न, मेरी जिंदगी, मेरे दा पसारा बहुत ज्यादा हो जाता है। मोह दा फैलाओ जितना वद्दा है, बस मनुख दा दुख भी उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है, उतना ही वद्दा जा रहा है। मोह ग्रसा प्राणी चैन दी नींद सो नहीं सकता, कारण जिस नाल मोह है, जिस देते मेरे दी मोर लाई है, आखरे मोर मिटती है। जिस ते मोर लाई है वो भी मिटता है, बस इतों ही दुख है, इतों बेचैनी, इतों ही संताप शुरू हो जाते हैं। दो चार उदाहरण राही मैं स्पष्ट करने की कोशिश करा। मां बाप का इकलौता बच्चा गालवन पांच छे वरिया का गुम हो गया है, नहीं लभ रहा। मां दियां अखां हर पासे लभदियां ने, पिता दे पैर हर पासे दौड़ रहे ने, दिल हर वक्त याद कर रहा है, अखां छम छम हंजू पियां वगंदियां ने। जीवन बहुत पीड़ा दे बतीत हो रहा है। जो मेरा सी, जिस च मोह सी, बिछड़ गया। सहजे सहजे विछोड़े दा दुख
बीमा पैदा गया। क्यों? कहते हैं समा सब कुछ नु पाट देंदा है, समा जख्मा नु भर देंदा है। बहुत समा लंग गया, आज 5 साल हो गए उस बच्चे नु गुम होया। अचानक आज किसे ने दर पे दस्तक दिती और उसने आके आख्या, थोड़ा जो बच्चा जो बहुत पहले किधरे गुम होया सी उसनु मैं देखे। जिस हार दी तुसी गल कहंदे सी वो हार उसदे गल दे च है, आके देखो। खैर कुछ हो लिया, हार रंग रूप मेल खांदा वेख के प्यो ने सीने नाल लाया, मां ने अखां विच बिठाया। विछोड़ा मिलाप दे सुख दे च बदलिया, हंजू हासियां दे च बदले, मुरझाना खेड़े दे च बदलिया, दुख सुख दे च तब्दील होया। 5 साल दा विछोड़ा मां ने ममता डुल डुल के डोली, प्यो ने प्यार दे मानो सागर उमड़ा देते। वेख वेख के मां दियां अखां रजदियां नहीं, प्यो दा दिल भरदा नहीं। पालन पोषण इस तरह चल रहा है, दिन लंघदे गए। बच्चा बहुत खुश, उसनु इतनी ममता मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है। ओ भी खेड़े च, ओ भी खुशी च, मानो बच्चा मिल गया, प्यो नु पुत्र मिल गया, उन्हां दी भी प्रसन्नता। पर अज किसे होर ने आके द्वार ते दस्तक दित्ती, आख्या जिस बच्चे नु तुसी ले आयो ये थोड़ा नहीं, थोड़ा बच्चा ते मैं वेखे है, वो हो रहा है। इस बच्चे ने उसे ही बच्चे दे गल चो हार उतार के आप पाया है, आओ थानु दिखाइए। जद जाके मां ने वेखया, प्यो ने वेखया, हुलिया बहुत नेड़े मेल खांदा सी, आवाज मेल खांदी सी, चाल ढाल मेल खांदी सी। मां ने सीने चलाया, प्यो ने उंगल पकड़ी उस बच्चे दी, कर ले आए। नजरां जिस हुण लैंदे बच्चे ते टिकियां, पहले लैंदे तो नजरां फिर गईयां। हुण अखां विच ते उस लई था नहीं सी, घर विच भी उस लई मानो था नहीं सी। धारा मोदी बदल गई, दूसरे बच्चे ते टिक गई। सारा प्रेम सारी ममता मां ते पिता दी इस नवे लैंदे बच्चे देते डुलन लग पई। पहला मायूस रहन लग पया, दुखी रहन लग पया। जैसे बूटे नु पानी ना दियो कुमलान लग पैंदा है, मासूम बच्चा ममता तो वांझा रह गया, प्यार तो वांझा रह गया, सत्कार तो वांझा रह गया, कुमलान लग पया। दूजा खिड़न लग पया, वधन लग पया, प्रफुल्लित होण लग पया। पहला लेंदा हुआ बच्चा इतना कुमला गया, इतना मुरझा गया, मुरझा के टूट गया, मिट गया, सुत्ता सुत्ता अबदी नींद सौं गया, हमेशा दी नींद सौं गया।
ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚ ਹੰਝੂ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਕੇ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਾਹਦਾ ਮੋਹ। ਲੇਕਿਨ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਸ ਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਹੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਉੱਠੀ ਮਾਂ, ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਗਮਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਰਗਟ ਘਾਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਪੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੇਜ਼ਾ ਰੇਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ ਟੁੱਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਪ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਪ, ਮੋਹ, ਦੁੱਖ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮੇਰੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੇਰੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ, ਤੋ ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਮਿਥਿਆ ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਿਆ। ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਯਕਸਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੜਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਗਿਆਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੋਂ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੋਹ ਦੇ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਇਹ ਮੋਹ ਸੰਪਤਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਪਕੜ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੌਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਬੌਧਿਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਘਟ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਕੜ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਰਾ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਨ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ। ਜੈਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਾਂਗੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਏ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਜੈਸੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਮੰਨਣ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਹ ਧਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਧਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਰਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਛੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਲਖੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਲੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾੜ ਦੇਖੋ, ਦੀਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਦੂਰੀਆਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਧਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਧਨ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਨ, ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਤਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਧਨ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਤੋ ਅਚੇਤਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦੀ ਪਕੜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਧਨ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਵਰਤੀਏ ਧਨ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੀਏ, ਔਰ ਜੋ ਇਸਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ, ਧਨ ਕੋਈ ਹੀਲ ਹੁੱਜਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਪਗੜ ਸ਼ਿਖਰਤਾ ਤੇ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਕੜ, ਕੁਲ ਦੀ ਪਕੜ, ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਪਕੜ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦੀ ਪਕੜ, ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੀ ਪਕੜ। ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਨਾਪਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤਦੀ ਤੇ ਧਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਹੇ ਮੋਹ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੋਹ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਗੇੜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੈਸੇ ਉਸ ਖੱਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ। ਸਿਆਣੇ ਤੈਰਾਕ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਿਕਲਣ ਦਾ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਉਸ ਘੇਰੀ ਚ ਫਸਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਗੋਤੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਤਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
और जब सारे निकल जाते ने प्राण तो यह भी घूमण के रिचा निकलता है। परिवार का मोह, धन का मोह, संपदा का मोह, जीवन का मोह, मान मर्यादा का मोह, ऐसी घूमण घेरी है। एक दफा जन्म दे लेके जद मनुख फसदा है तो मरण तो बाद ही उस घूमण घेरी चो निकलता है। और एक गल वखरी है, एक घूमण घेरी चो निकले है फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी, फिर जन्म आना है, फिर घूमण घेरी। इस तरह अनंत जन्म घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है, मरदा है, फिर घूमण घेरी च फसदा है और मरदा है। इस तरह अनंत जन्म दुखां दे बतीत होंदे ने। अनंत जन्मां दा संताप मनुख दे कोल जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है, जमा होंदा जा रहा है। ठीक आखे है, मोह घूमण घेरी है, मोह चक्र वांको नीर जारे वांको सीर है। भर्तरी ने ठीक आख है, मोह ऐसी घूमण घेरी है, इसी ची मनुख फस के रह जाता है, इसी ची मनुख तड़क के रह जाता है। और निकलना जींदे जी उस लई औखा हो जाता है, कठिन हो जाता है। लिहाजा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मोह नू जो पहल दिती है, इथों ही मनुख दिया मूल कमजोरिया का जिक्र करना आरंभ कर देने हैं। ये ठीक ही है, वाकई यही कैसा चक्कर है, यही कैसा घेरा है जिस विच फसदा है मनुख, निकलना कठिन हो जाता है। 80-90 साल का भी मनुख हो जाए, 100 साल का भी मनुख हो जाए, जीवन का मोह, संबंधियां का मोह, धन संपदा का मोह छोड़दा नहीं, मनुख होर जो है फसदा है। जद कदी ऐसी विचार चले तो मैंने एक और बिरध माता चेते आउंदी है, गालबन 90 साल दी, कुबड़ा शरीर, हड्डियां दा ढांचा, बड़ी मुश्किल नाल मेरे कोल चल के आई, हाथ जोड़ के कहन लगी, ज्ञानी जी मेरे लिए अरदास करो। तो मैं सोची पै गया, भया पुराना चोला, चोला पुराना हो गया जिंदगी दा, यही आखती होवेगी परमात्मा संभाल लवे। तो मैं आख्या दसो मां की अरदास करनी है। कहन लगी ओ सामने मेरा पड़पोता खेड रहा है, बस इसका व्याह वेख के मरा, अरदास करो। मैं आख्या नहीं मां, ये अरदास नहीं हो सकती, तू अपना व्याह वेखिया नहीं रजी, पुत्रां दा व्याह वेखिया नहीं रजी, पोतरियां दा व्याह वेखिया नहीं तृप्त होई, तू याद रख पड़पोतरे दा व्याह वेख के भी नहीं रजेंगी। ये मोह दा घेरा होर वड्डा हुंदा जाएगा, होर वड्डा हुंदा जाएगा, और मरण तो पहले ये घेरा टुटदा ही नहीं। धन ने और मनुख जो मौत तो पहले, प्राणों दे निकलन तो पहले मोह दे घेरे विचों निकल जाते ने, बड़े सूरबीर ने, मोह नू जित लिया, मेरे नू जित लिया, और जो मेरे नू जित लैंदा है मोह नू जित लैंदा है, प्रभु उसनू गलवकड़ी चलांदा है और जीवन की बाजी वाकई जित लैंदा है, अपनी जिंदगी वाकई सफल कर लैंदा है।

अत बलना बहुमर्दने। हे अजित, हे संग्राम दे सूर में, हे अति बल रखण वाले, तू बड़िया बड़िया नू मर्दन करके रख दिता है, मल के रख दिता है। कीड़िया कीड़िया नू धन गुरु अर्जन देव जी महाराज गिनती करते हैं। गण गंधर्व देव मानखं पस पंखी विमोहने। बड़े बड़े गण गंधर्व चोटी दे संगीतकार, चोटी दे दार्शनिक फिलोसफर विचारक देवते मानुख चंगे चंगे मनुख स्याणे मनुख गण गंधर्व देव मानुखं पस पंखी विमोहने। फिर ऐ मो तेरी लपेट देच पशु भी आ गए, पंछी भी आ गए, मानो सारा जगत समूह ब्रह्मण ऐ मो तू अपनी गिरफ्त च ले लिया, तू अपनी पकड़ च ले लिया। बंदरी अपने मरे हुए बच्चे नू भी सीने नाल लाई फिरती है। सियाने कहंदे ने चीथड़ा चीथड़ा हो जाए, हड्डियां का ढांचा हो जाए, चूरा चूरा करके गिरन लग पाए, तां भी बंदरी बच्चे नू छोड़दी नहीं, सुटदी नहीं। जिन्ने चिर तक उसकी दोबारा को खरी नहीं आउंदी, बच्चा नहीं आउंदा, नहीं छोड़ती। इतना मो, इतना प्रबल मो, मेरा है, मेरा है। तो सिर्फ मनुख ही नहीं पशु पक्षी, सिर्फ मनुख ही नहीं दिव्य शक्ति रखने वाले देवते, बड़े बड़े दार्शनिक फिलोसफर गण गंधर्व संगीतकार सारे इसकी लपेट दे चुके, सारिया का मर्दन करके रख दिता है। बचाओ किस तरह करिए। फिर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस श्लोक की अखीरली पंक्ति च इन फरमान कर देने,

ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰਤਾਰ ਹੈ, ਸਮੂਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਕਿ ਮੋਹ ਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰ। ਹਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਨਮਸਕਾਰਨ, ਸਜਦਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਔਰ ਆਖ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਸ਼ਰਨ ਨਾਨਕ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰ। ਇਹ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਬਚਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਔਖਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਮੋਹ ਮੇਰਾ, ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਦੀ ਬਦਬੋ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਮਹਿਕ। ਮੋਹ ਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦਾ ਚਾਨਣ। ਮੋਹ ਦੀ ਕਠੋਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਰਮੋਹ ਦੀ ਦਇਆ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਇਆ ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪੜੋਸੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਪਣਾ ਕਰੋੜ ਬੱਚਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪੜੋਸੀ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਦਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬੜਾ ਸੀਮਤ, ਮੋਹ ਗ੍ਰਸੇ ਦੀ ਸਮਝ ਬੜੀ ਸੀਮਤ। ਮੋਹ ਗ੍ਰਸਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਅਸੀਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਹਾਬਲੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਮੋਹ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ, ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਜਨਾਬ ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਅਕਬਰ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਚੜਾਵੇ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਚਦਰਾਂ ਚਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਆਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਧਕੜ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਦੇ ਘਰ ਸੁੰਦਰ ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਹ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਗ ਉੱਠਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਖਿਡਾਉਣਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਕੇ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਮਤਾ ਸਲੀਮ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਲੀਮ ਗੋਦ ਦੇ ਚ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਖਾਦਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਦਮਾ ਸਲੀਮ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਦਮਾ ਨੌਕਰਾਣੀ ਕੀ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਹਾਂ ਪਨਾਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ,
सब तो सुंदर है। खादमा, मैं ऐसा सोच रहे हैं, खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी ने भी नहीं बनाया। हाथ जोड़ के खादमा कहने लगी, जहां पना ये हो ही नहीं सकता कि सलीम तो ज्यादा कोई खूबसूरत हो गए, वो किस तरह हो सकता है। खुश होके प्रसन्न होके पंज मोरां खादमा दी हथेली ते टिकाइया। आख्या, खादमा तू ये काम छोड़, जा आगरे विच, जा आगरे शहर विच, लब कोई ऐसा बच्चा जो सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत हो गया। मैं तेनू भी माला माल कर देंगा, बच्चे दे मां बाप नू भी माला माल कर देंगा, दोहां दियां झोलियां भर देंगा। और मैं जानना चाहना कोई सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है। अगर मोहदा मारिया ये अकबर अपनी खादमा दे नाल इस तरह दियां गल्लां कर रहे हैं और कह रहे हैं, जा लब के लिया हुक्म मन खादमा चल पई। सवेर दी गई, दिन ढलदियां वापस आ रही है दबे हुए पैरां नाल, तरह तरह दी विचारां दी डुबी हुई गोद विच एक बच्चा ले आया। सिद्धी अकबर दे पास आई, देख के अकबर खुश होया है, कोई बच्चा ले आई है, इसकी गोद विच है। खादमा तू ले आई है ऐसा कोई बच्चा जो सलीम तो भी ज्यादा खूबसूरत है? हां, जहां पना मैं ले आई हूं। अकबर ने चद्दर एक पासे की थी, चीथड़ियां दे चिलिपटे आया एक करूप और मैला बच्चा खादमा दी गोद देच है। हैरान होके अकबर कहता है, ए बच्चा किसना बच्चा है? जहां पना ये मेरा ही बच्चा है, मैं सारा आगरा शहर गांव आ रहा है, जहां पना इस बच्चे तो मैनू ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं दिसया। सच पूछें और मेरे जान दी बख्शी करें, ऐ जहां पना तेरा सलीम भी इसके सामने पिक कर है। कहते ने नौकरानी दे इना बोला ने अकबर दियां अखां खोलियां। ख्याल आया, मैं मोह दी नजर नाल सलीम नू वेख रहा, ये मोह दी नजर नाल अपने बच्चे नू वेख रही है। मोह करके सारे जहान नालों इस नौकरानी नू अपना बच्चा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और मोह करके मैनू सलीम सब नालों सुंदर दिखाई दे रहा है। सियाणा सी, आलम फाजला नू अपनी सभा विच रखदा सी, एकदम गल समझ दे चा गई, पकड़ दे चा गई। और ये असी रोजमर्रा दी जिंदगी विच देखदे आ, मनुख नू अपने औगणा नाल भी मोह हो जांदा है, किसी दे गुण भी उसनू चंगे नहीं लगते। अपना करोप बच्चा भी महान है, यूसुफ है, लेकिन पड़ोसी का सुंदर बच्चा भी करोप है, बेमैनी है। तो स्वप्न उजागर करता है मोह, और यह स्वप्न बनावटी होता है, वक्ती होता है, आरजी होता है, और मनुख इसी चीज फसया रहता है। कदी कदाई
कोई मनुख प्रभु दी शरण प्रकट प्रभु दा चिंतन कर नाम दे गीत गांदियां गांदियां मोह दे पर्दे नूं परे सुटदा है निर्मोह हो जांदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल उसका परिवार और उसके चों भी कुछ सदस्य उसके अपने ने बाकी दे सारे दा सारा पराया इतना वड्डा जगत ते ओ परा होवे पराया होवे तो फिर ते मनुख भय विच जीवेगा डर विच जीवेगा दुख विच जीवेगा इस वास्ते मोह ग्रसिया दुख विच ते भय विच जीवदा सारा जगत अपना है प्रेमी लई सारा संसार अपना है तो निर्भय होके विचरदा है आनंद नाल विचरदा है सुख नाल रमण करदा है सब जो अपने ने मोह दी सीमा होंदी है निर्मोही असीम होंदा है निर्मोही लई सारा संसार उसका अपना है मोह ग्रसे लई केवल परिवार ही उसका जो है अपना है बहुत छोटी दुनिया होंदी है मोह ग्रसे दी जिसकी दुनिया छोटी उसकी अकल छोटी उसकी सोचनी छोटी उसकी समझ छोटी उसका सब कुछ छोटा बहुत छोटे तल ते जीवदा है मोह ग्रसिया मनुख और असीम तल ते जीवदा है निर्मोही कोई सीमा नहीं परमात्मा की कोई सीमा नहीं निर्मोही की कोई सीमा नहीं साढ़े देश दे एक ऐसा भी पुरुष होया है राजा सी स्वभाव किधरे मां बाप ने जन्म समय उसका ना रखिया सी निर्मोह और वड्डा होके भी यही नाम पर चलत रहा निर्मोह राजा निर्मोह इतिहासक वार्ता है एक ऋषि ने जब ये नाम सुने राजा निर्मोह हो नहीं सकता कठिन है औखी गल है तो परीक्षा लई चल पिया निर्मोह दे महलां दी तरफ जैसे महलां विच दाखल होया है राजे निर्मोह दी पटराणी मिली और इस ऋषि ने पूरा तौर तरीका पहले बनाया हुआ सी कि मैं स्पष्ट करना है तू मोह ग्रसिया है निर्मोही नहीं राजे निर्मोह का लड़का इधरे ऋषि की कुटिया च आया सी और ऋषि ने उस बच्चे नु बिठा दिता आख्या जिन्ने चिर तक मैं ना आवा तू बैठी मैं थोड़ी देर दे चावना राणी नु ऋषि कहिंदा है राणी तुमको अति विभक्त सुत खायो मृगराज हमने भोजन ना कियो तिस मित्र के काज हे राजमाता थोड़ा सुत थोड़ा लड़का राजकुमार शेर ने खा लिया मैं ते भोजन छड़ के दौड़े हां थानू ए खबर सुनाने वास्ते पर ए राणी राजे निर्मोह दी राणी उस असीम मनुख दी संगत च रह रह के उस असीम मनुख की पत्नी भी निर्मोही हो गई सी मोह तो उच्ची हो गई सी ऋषि नु कहन लगी पेड एक शाखा घनी पंखी बैठे आए ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ देश देश जाए पेड एक शाखा घनी पंखी बैठे आए ओ फूटी चीरी पई उड़ उड़ दे दिस जाए संसार एक वृक्ष दी तरह है कई इस दियां शाखा ने कई मुल्क ने कई इलाके ने
और संस्कारा वे प्रालब्ध वसों के संजोग वसों के इना परिवारां दिया टहणियां ते आके पंछी बैठते ने। मौत दा सूरज चढ़दा है, दरगाह तो चीरी पाटदी है, ये पंछी वारी वारी उड़ उड़ के अपनी दिशा नूं चले जांदे ने। ऋषि ये कोई नवी खबर ते तू नहीं लेके आया, ये भी रोज हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा निजाम है, ऐसी बनतर है, ऐसी प्रभु दी लीला है। ऋषि दंग रह गया है। तप साधना करदिया करदिया थक गए, परिवार दे मोह दी दीवार अजे भी नहीं तोड़ सके, धन दे मोह दा पर्दा अजे भी बाकी है, जीवन दे मोह दी पकड़ अजे भी बाकी है। पर सोचता है चलो उस नाल ते गल करिए जिसका ना ही राजा निर्मोह है, उनू तो वेखिए गया। राजसभा ऋषि दाखल होया, आहो भगत की थी, दंडौत की थी, राजे ने सन्मान दिता, बिठाया, आन का कारण पूछया, ऋषि राज किस तरह पधारे, साढ़े इस घर नू किस तरह भाग लाए, इस राजसभा नू आके पवित्र कीता, आहो भाग साढ़े, कोई सेवा होवे ते दसो। ऋषि कहिंदा राजन बहुत दुख, बहुत संताप, बहुत माड़ी खबर राजन दसन लगे हैं, मेरी जबान लड़खड़ांदी है, पर मजबूर हां दसन देवी। मुस्कुरांदे हुए चेहरे नाल राजा निर्मोह कहिंदा है, दसोरा राज ऋषि संत जन दसो। खड़ा होया ऋषि ते कहिंदा है, राजन तुमको अति विपत पल पल घड़ी घड़ी

असीते कॉफी समय तो समझी बैठे हैं सरां है। एक आउंदा है, एक जाउंदा है, एक फूल खिड़दा है, एक मुरझा रहा है, एक फल फूल चो निकल रहा है, एक फल डिग रहा है, एक तारा उभर रहा है, एक टूट रहा है। इत एक प्रभु दी लीला समुची सरां देच ये आवागम बने होया है और इत्थे सारे मुसाफिर ने, असी भी मुसाफिर, असी भी एक दिन रुखसत हो जावांगे। ये कोई नवी गलती नहीं, पर मैनू दुख है, अफसोस है, ऐ ऋषि तू महान कार्य जो तप कर रहा सी तप क्यों छोड़िया? इस फोके संदेशे लई तू अपनी तपस्या क्यों छोड़ी? तपिया तप क्यों छाड़ियो? यहां हरख नहीं सो, ऐ तपीश्वर तू तपस्या क्यों छोड़ी? जितने सौखे ढंग नाल एक गल राजे निर्मव दी बयान कीती जा सकती है, जीवन विच धारना उतना ही कठिन, उतना ही कठिन, उतना ही कठिन। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज लखते जिगर अजीत सिंह जुजार सिंह कोल बैठे ने, गड़ी नू चारों पासे दुश्मना ने घेरे है। सतगुरु अजीत सिंह नू तैयार कर दें, होर सिखा नू नहीं कहंदे किधरे इतिहास ए इल्जाम ना ला देवे अपने बच्चे बचा ले सिख मरवा ले। नहीं, अजीत सिंह नू तैयार कीता है और सतगुरु उसनू जो कुछ कहंदे ने अला यार खां जोगी ने इंज कलम बंद कीता है। ऐ मेरे बच्चे, एक ख्वाहिश है मेरी तू पूरी कर। अजीत सिंह हथ जोड़ के कहंदा है, गुरुदेव पिता तुसी सारियां दी ख्वाहिशां पूरी करन वाले, असी की थोड़ी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? नहीं, तू ही पूरी कर सकता है। हुक्म गुरुदेव पिता, ताबेदार। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, बस इतना ही नहीं, पूरी गल सुन।

हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें, होनहार साहिबजादा अजीत सिंह हाथ जोड़ के कहता है, नाम का अजीत हूं जीता न जाऊंगा, जीता गया तो हार के जीता न आऊंगा। स्वयं श्रृंगार के शस्त्र पहना के सतगुरु भेजते ने अपनी अखां दे सामने शहादत दा जाम पींदे आया, दोवें लखते जिगरां नूं देखदे ने, शुक्र करदे ने परमात्मा दा, ईश्वर दा, अकाल पुरख दा, असीम प्रेम दी दुनिया च जीण वाले धन गुरु गोबिंद सिंह जी।

हर हर हरे। मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरियां दे चों प्रबल कमजोरी अहंकार अहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ए मैं रहंदी है ए अहं भाव रहंदा है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलदा रहंदा है चलदा रहंदा है। ए जन्म ते मरण दा मूल है ए जन्म ते मरण दा कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान होमें एहा जात है होमें कर्म कमाए होमें एही बंदना फिर फिर जौनी पाए। होमें दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करदा है अहंकार आशत चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने। अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म विच और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण दी बहुत ही लंबी यात्रा दे च पा देंदा है बहुत लंबे गेड़ दे च पा देंदा है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान कर रहे ने हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवां विच अपने अपने दोष पाए जांदे ने जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसे तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग होमे रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस की ना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ए रोग बंधन दा कारण बनदे ने ए रोग दुख दा कारण बनदे ने और मनुख दे सारे दुखां दा मूल कारण अहं अहंकार। अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करदा है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थां दा अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा दे प्रति कीते गए ने उसदा अहंकार किधरे इस जीवन दा अहंकार किधरे उस परम जीवन दी प्राप्ति दे जो साधन ने उना दा अहंकार। मूल रूप विच ए अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है जोवन जवानी स्वप्न दे आधार ते खड़ा होंदा है और शक्ति सता ताकत इसते आधार ते खड़ा होंदा है। जो बन धन प्रभ ताकै मद में
اہنس رہے دیوانہ دن رات پاگل دی طرح گھوم رہا ہے جو بندی مستی وچ دھن دی مستی وچ اور ستا دی مستی وچ دھن جیب دے چوے یا من دی سوچنی دے چوے جو بنونت ہوئے یا جوبن دی چاہ من دے چوے ستا دھاری ہوئے یا ستا دا چنتن اندر چلدا ہوئے دوہاں حالتاں پاگل ہو جاندا ہے ستا پاگل کر دین دیئے ستا دا چنتن بھی پگلا دین دا ہے جوبن پاگل پندی سیما تک لے جاندا ہے پر جو بندہ چنتن بھی پاگلوں والی حالت بنائی رکھتا ہے اسی طریقے نال دھن دھن جیب دیچ ہے دھن گھر دیچ ہے یا دھن سوچاں دیچ ہے وچاراں دیچ ہے منکھ تے پاگل ہوئے گا اس دا بہت وڈا پاگل پن دھن آشرت ہے جوبن آشرت ہے اور ستا آشرت ہے تدی پادشاہ فرمان کر رہے نے جو بن دھن پربتا کے مد میں اہنس رہے دیوانا دن رات پاگل ہویا پھردا ہے اسے وچ اہنکاری اپنے آپ نو مہان سمجھدا ہے دوسرے نو تجھ سمجھتا ہے آپس کو دی رگ کر مانے اورن کو لگ مات منسا باچا کرمنا میں دیکھے دوزک جات ہر ایک نو چھوٹا سمجھتا ہے چاہے اگلا مہان ہوئے چاہے سویم تچھ ہوئے اپنے آپ نو مہان سمجھتا ہے اچھا سمجھتا ہے سب تو اچھا سمجھتا ہے ایرانی صوفی سنت حافظ فرمان کر دینے در محفلے کے خورشید اندر شمار ذراست جس دی محفل دے خورشید اے سورج ایک ذرہ ہے ایک نکا جیا ریت دا ذرہ ہے در محفلے کے خورشید اندر شمار ذرہ است خود را بزرگ دیدم شرط ادب نواشد اس محفل دیچ تو اپنے آپنو آکھے میں وڈا میں وڈا میں مہانا جتھے سورج بھی ایک نکے جیاں ذرے ورگا ہے اس دی بھی کوئی اوقات نہیں پر منک دی بھل منک دا اگیان اور جتنا پربل اگیانی ہوئے گا اتنا اہنکاری ہوئے گا ایک اردو دا مہان شاعر اس نو ایک ہور ڈھنگ نال وی بیان کر دینے علم کے جہول سے بہتر ہے جہول کا علم میں نے یہ درس پایا اپنی بصیرت سے گیان دی مورکھتا دے نالوں بہتر ہے مورکھتا دا گیان علم دی جہالت نالوں چنگا ہے جہالت دا علم اگر تھوڑا بہت کچھ سمجھے ہے عالم ہویا ہے ودوان ہویا ہے اور کئی گنا اس تو ود اہنکار نال پر گیا ہے تو اہنکار اس گل دا ثبوت ہے جو علم ہے وہ عمل دچ نہیں اور اے اہنکار مورکھتا تے کھڑا ہے علم کے جہول سے بہتر ہے جہول کا علم گیان دی مورکھتا دے نالوں بہتر ہے مورکھتا دا گیان اہنکار اگیان تے کھڑا ہوندا ہے گیانی بھی اگیانی سمجھو اگر
अहंकारी है। भगत शर्मौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। इति सारे भूल के पागल होए फिर देने कौन, हम बड़ कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान, हम बड कव कुलीन हम पंडित हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहिंदे ने अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा दे आसरे ते अहंकार नूं अस्थूल रूप धारण दा मौका नहीं मिलदा। इह गल वखरी है कि मूरख गुण ना होंदे आया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसनों इतना बोझल नहीं करता। यह गल वखरी है कि वह अहंकार मूर्खता ते खड़ा है, अवगुणा ते खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, इक ना नाद ना वेद। एक हद न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जान, इक ना सुरत न सिद्ध अकल सिर, अखर का भयो न लहंत। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा, संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करंद, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी फिर देने। पर बड़ा परबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा है, और अहंकारी दियां अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार दी प्रदर्शनी कर दी है। भगत कबीर कहंदे ने चलत कत टेडे टेडे, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता, अगर सीधा चले तो उसकी चाल दा पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगां दियां निगाहां मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा दी निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारियां दियां निगाहां मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेडे टेडे अस्त चरम बिस्टा के मुंदे, दुर्गंध ही के बेडे तू है कि हड्डियां हड्डियां दे चढ़े होया मांस, मांस दे चढ़ी हुई चर्बी और चर्बी दे लिपटी हुई खलड़ी, और की है तू
ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ, ਮਾਸ ਦਾ ਮਾਣ, ਮਿੰਜ ਦਾ ਮਾਣ ਔਰ ਖਲੜੀ ਦਾ ਮਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਆ ਤੇ ਇਤਨੀ ਨਾਪਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਛੂ ਜਾਏ ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਪੂਰ ਪਹੁਪ ਸੁਗੰਧਾ ਪਰਸ ਮਾਨਕ ਦੇਹੰ ਮਲੀਣੰ ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਵੇਣ ਅਗਿਆਨੜੋ। ਕਪੂਰ ਤੇ ਚੰਦਨ ਜੈਸੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਜੈਸੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵਸਤੂਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਨਾਲ ਛੂੰਦਿਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਜਾ ਰੁਦਰ ਦੁਰਗੰਧਾ ਨਾਨਕ ਅਥ ਗਰਵੇਣ ਅਗਿਆਨੜੋ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਗੰਧ ਖੂਨ ਮਿੰਜ ਮਾਸ ਖਲੜੀ। ਅਗਿਆਨੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਤਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਧਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਵੇ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਵੇ। ਪੁਰਖਾ ਈਸ਼ਵਰ ਵਸੀਲਾ ਨਾ ਬਣੇ, ਧਨ ਕਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਵਸਾਹਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਇਹ ਤਨ, ਔਰ ਤਨ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਉਸਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਵਸੀਲਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਤਾ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਇਸਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਅਗਾਂਹ ਚਲੀਏ ਤਾਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਅਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਤੋਂ ਜਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਗਤ ਤੋਂ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਣ ਇਸਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਧਨ ਹੈ ਤਾਂ ਧਨ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਗ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਸਤਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਤਾ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਸਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਐਸਾ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਫਿਰ ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਿਆਗ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਅਹੰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਔਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੰਕਾਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਨ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਮਾਲਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਪ, ਇਹ ਮਾਲਾ ਦਾ ਫਿਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਹੰਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ,
और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार दावा कीता सी हरनाकश ने, मैं परमात्मा कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हां खुदा कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नु भी मनन नु तैयार नहीं, इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर, और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दी निगाहां दा मरकज बन जावा, केंद्र बन जावा, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा माण मैं हो जावा, मेरे ते माण करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए, इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा निरंकार दी यात्रा। निरंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है तू है तू है तू है तू है, अहंकार दी यात्रा आरंभ होंदी है मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां मैं हां, ये जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है तू है तू है, ये जन्म मरण नू मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है, बूंद सागर दे चलीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने तू तू करता तू भया मुझ में रहा न हूं जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू तू है तू है तू है, इस बिरती ने इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले हैं सारंग पानी राम कबीरा एक भय है कोई न सके पछानी। तू है तू है तू है, इसने भगवान दा रूप बना देता। मैं हां मैं हां मैं हां, ये शैतान दा रूप बना देता है। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान दा रूप है जिसते रोम रोम देच जिदियां सारियां क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रगट हो रहे है। श्री रविदास सही कह रहे ने, जब हम होते तब तू ना ही अब तू ही मैं ना ही, जद मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं, ये तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज दी बाणी दा फरमान हों में नावे नाल विरोध है दोए न वसे इक ठाए, ये मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी दी सारी साधना है मैं हां मैं हां, उदी सारी भज दौड़ उदी सारी क्रिया उदी सारी तपस्या उदी सारी मेहनत, ये किस कारण हो रही है मैं। पर विनम्र मनुख दा संत दा सब कुछ तू आश्रित है, तू ही है,
तोईयां उत्थे मैं दी कोई चिंगारी नहीं रहिंदी जिस विच गुण भस्म हो जांदे ने। बस तू ही एक आलम दा कहना है अज राह चनार अज राह चुनार कि सलामत न कुनत इस ढंग नाल चल रस्ते देच कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके इतना आकड़ के ना चल। बाखलक चुनाज ही के कयामत न कुनद खलकत देच इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होवे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा दर पेश न खुआनद ओ इमामद न कुनद जे किधरे इबादत करनू तेरा जी करे तो निमाजियां दे पिछे होके नमाज पढ़ी किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दियां मस्जिद दे भी तू कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरां दे भी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने ते प्रधान ते परमात्मा है या फिर जिसदा मिट गया सारा अहंकार वो प्रधान हो सकदा है। सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभमान जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनदा है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है शायद उसनू मखलूक दे कदमा दे च भी जो है था ना मिले पर अहंकारी ते सिर ते बैठन दी कोशिश करदा है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगां दे सिर दे उत्ते ही हुंदे ने। सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है और अहंकारी सिरां ते ही ते बैठदा है। कई दफा सिर हिल जांदे ने ते थल्ले गिरदा है। इस वास्ते कहंदे ने गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगां दे सिर झुकाना चाहंदा है एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जांदा है। अहंकारी शर्मसार होके रह जांदा है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है सारी धार्मिक साधना इस दीवार नू तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है ये धार्मिक साधना नू भी अपना सिंघासन बिठा बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जांदा है। तीरथे बरते अरदान कर

ये रोग अंदर है तो वैद्य भी अंदर बैठा है, औषधि भी अंदर है, तो उस औषधि का सेवन कर।

सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। काल जाल जम जो न साके सच का पंथा थाट्यो। सतगुरु की बाणी का फरमान हुण काल दा जाल सानू वेख नहीं सकदा। काल दी फाई साढ़े ते पै नहीं सकदी। क्यों? असी सच दे मार्ग ते चल पए, असी सच दा पंथ बना लिया, असी सच दे राही बन गए। काल जाल जम जोह ना साखे सच का पंथा थाट्यो। काल समा अकाल समय तो रहत, फाई समय दी है, जाल समय दा है। मनुख वक्त दी गिरफ्त दे चै, मनुख समय दे बंधन दे चै, और समय दे प्रभाव हेठ जी रहे। वक्त समा काल मनुख तो जो चाहता है कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, कराही जा रहे है, और ये सब कुछ मनुख काल दे जाल दे फस के ही कर रहे है। इंज कह लो बंधन दे चै। समय दा बोध होंदा है दिन करके रात करके। ठहर जाए दिन तो समय नु नापना औखा होवेगा, ठहर जाए रात तां वी समय नु नापना बड़ा औखा होवेगा। दिन ते रात दी ए गर्दिश समय नु नापण दा जरिया बनी, समय नु समझण दी एक प्रेरणा मिली दिन तो रात तो। लेकिन रात अपना एक बंधन लेके आउंदी है, दिन अपनियां बेड़ियां लेके आउंदा है। रात अपनी जाल लेके आउंदी है, दिन अपनी फाई लेके आ जांदा है। शायद इसे वास्ते ते पातशाह ने फरमान कीता, जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाई देती। दिन आया है एक जाल दी तरह, रात आई है एक जाल दी तरह, ते दिन ते रात दियां जो सठ घड़ियां ने ते सब फाइयां ने। रस रस चोग चुगे नित फासे छूटस मोड़े कवन गुने। ऐ मूरख किमें छुटेंगा, समा तेरे कोल कराई जा रहे है, और इस सब कुछ तो इस तरह करदा पिया जैसे फाई देच फड़िया कोई पंछी फड़फड़ांदा, जैसे जाल देच फड़िया फसिया होया कोई पंछी फड़फड़ांदा तड़पदा है। तो इस तरह मनुख दिन नु तड़प रहा है, रात नु तड़प रहा है, जो कुछ कर रहा है बंधन ही बंधन, जो कुछ कर रहा है मजबूरी ही मजबूरी, समा खिंच के इस तो सब कुछ कराई जा रहे है। इस वास्ते भारत दा धार्मिक अध्ययन करता, धर्म दी गहराइयां च जान वाला, उसने परमात्मा नु एक नाम दिता है अकाल। परमात्मा दी दुनिया च समा नहीं है, वक्त नहीं है, उत्थे वक्त है ही नहीं।
संसार काल है, निरंकार अकाल है। जो संसार विच जी रहा है, काल विच जी रहा है, और जो अकाल नाल सुरत जोड़ बैठा है, उसे संसार तो उच्चा उठ गया, काल तो उच्चा उठ गया। विद्वाना ने समय दिया तीन धारावां मनिया ने समय नो तीन हिस्सों विच वंडिया है, भूत भविष्य वर्तमान, माजी हाल मुस्तकबिल। मनुख जी रहा है समय दिया इन्हां ही तीन धारावां दे। जद मनुख कहिंदा है मेरा मन टिक नहीं रहा, तो किथे चला गया? चला गया भूतकाल विच, चला गया भविष्य विच। मनुखी मन दी आदत है कदी भविष्य दी चिंता विच जीवना, कदी भूतकाल दियां यादां विच जीवना। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दा पिछोकड़ बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। मनुख दी जीवन यात्रा पिछोकड़ बहुत लंबी है, बहुत लंबी है। एक धमाका होया सी ब्रह्मंड दे, एक शब्द होया सी, फिर धुंध बनी, पानी बनिया, ठोस जीवन बनिया, वनस्पति पशु पक्षी सहजे सहजे ए विकास चलदा रहा। अनंत काल तो बाद ए जीवन मिलिया जिसनु मनुख कहंदे आ, तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। क्योंकि असी कदों तो हाँ ये नाप ही नहीं सकते। बल्कि भाई साहब भाई नंद लाल ते ऐसा कहंदे ने, नबूद हेच निशान हांजे जमीनो आसमा, कि शौके यादे तो अवर्द दर वजूद मरा। जमीन ते आसमान दा नामो निशान नहीं सी, नहीं सी। हे गुरु हे प्रभु, मैं ते उदों दा यात्रा दे छा, पड़ाव ते बड़े आए, मंजिल नसीब नहीं हुई। रस्ते च वक्ती विश्राम करन लई थावां ते आईयां, सदीवी सुख सदीवी विश्राम, ओ ते मंजिल ते लबना सी, मंजिल ते मिली नहीं। तो भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भविष्य नु बहुत लमकाया जा सकता है, बहुत लमकाया जा सकता है। मनुख दियां इच्छावां, मनुख दियां वासनावां, मनुख दियां कामनावां नु नापिए तौलिए, इन्हां कामनावां विच ते सैकड़े नहीं लखां जिंदगियां जीवियां जा सकदियां ने। इतनी कामना, इतनी इच्छा, इतनी प्रबल वासना, इतनियां ख्वाहिशां, ये इस छोटी जी जिंदगी लई बोझ ने, बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा ने। जिंदगी छोटी, ख्वाहिश बहुत लंबी, बहुत लंबी, बहुत लंबी। जीवन सीमित है, कामनावां सीमित नहीं ने, वासनावां सीमित नहीं ने, असीम ने। जीवन सीमा विच कामना असीम, वासना असीम, इच्छावां असीम। इस वास्ते मनुख नो समा चाहिदा है, अस्थान चाहिदा है। तो भविष्य बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। भूतकाल बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है। एक तीसरा समय जिसनु कहंदे ने वर्तमान, वर्तमान कितना होवेगा, वर्तमान नु किस तरह नापिए। असीम है
भूतकाल, असीम है भविष्य, और मनुख इना दोहां विच जीवंदा है। जैसे पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी कहंदे ने, बीत गई दी याद पई हड्डां नूं खावे, आउण वाले दा सहम पिया मन नूं तड़फावे। जो समा लंघ है उस दियां यादां मेरियां हड्डियां खा रहियां ने। जो समा आण वाला है उहदी चिंता मैनूं जला रही है। भविष्य दी चिंता जला रही है, भूतकाल दियां यादां खा रहियां ने। इंज मनुख कदी भविष्य विच जल रहा हुंदा है, कदी भूतकाल विच खाया जा रहा हुंदा है, मिटदा जा रहा है। वर्तमान एक इन्ना क है, वर्तमान बहुत छोटा है। वर्तमान दी सीमा है, इस वास्ते वर्तमान विच कोई जीवदा नहीं, और वर्तमान दे जो टिक गया उसे नु योगी कहंदे आ, उसे नु असी संत कहंदे आ, उसे नु असी भगत कहंदे आ, उसे नु ही आत्मदर्शी कहंदे आ। पर फिर भी ना पिए वर्तमान किन्ना क है। धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दे अनन भगत भाई साहब भाई नंद लाल इस नु नापते ने, वर्तमान किन्ना क है। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। वर्तमान ते एक दम है, एक दम एक क्षण एक सैकंड एक दम, इह एक दम जो मोह दे चै नकद है, कोल है नकद है। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, मिलने ने कि नहीं। भूतकाल दम खर्च हो गया, दम ते लंघ गए, उते वर्त ले, उते खर्च हो गए। भविष्य दे दम उधार ने, पता नहीं आवने ने कि नहीं, नकद ते है ओही दम जो मुंह दे च है। यकदम बहेशरा न बुरदम के कीसतम, एक दम दी मैं विचार ना कीती, एक ही है। दम दम करके मेरी जिंदगी रायगा चली गई, व्यर्थ चली गई। यकदम बखेशरा न बुरदम के कीसतम, ऐ वाय नकदे जिंदगी रायगा गुजस्त। एक दम जो नकद से इन मैं खर्च कीता, गुजरे हुए दमा दी याद दिच, खर्च होए दमा दी याद दिच। एकदम जो मेरे मुंह दिच सी वर्तमान नकद, इनू मैं बतीत कीता आण वाले दमा दी चिंता च। तो इस तरह यादां भूतकाल दियां, चिंतावां भविष्य दियां, वर्तमान विच ते कोई जीवदा ही नहीं। वर्तमान है एकदम। शायद इस वास्ते ही दुनिया भर दे महापुरुषां ने कहा है, परमात्मा जद मिलदा है एक क्षण विच मिलदा है, एक क्षण वर्तमान, एक सैकंड। एक चित जै एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच ना आयो। टुकदम करारी जो करे, हाजर हजूर खुदा है। उस दम दे ची अपने आप नु रोक लवे, वो एक दम जो नकद है उस ते विच ही मनुख बैठ जाए।
حاضر حضور خدا ہے. اسے میں مہان صوفی سنت بابا فرید نے انج بیان کیتا ہے، آج ملاوا شیخ فرید تاکم گونجنیاں منو مچندنیاں، جس نال من مچھردا ہے جے تو کدرے روک سکیں، جے کدرے بھوت کال دیاں یاداں نو مٹا سکیں، جے کدرے بھوش دی چنتاواں نو تو جلا سکیں، ہنے ہی خدا تے پرگٹ، پربھو تے پرگٹ. پر ورتمان وچ پہنچن لئی تے بڑی سادھنا، بڑی تپسیا. ورتمان وچ ہی بھگوان پرگٹ ہوندا ہے، ورتمان وچ ہی پربھو دی جھلک ملدی ہے. شاید اسے واسطے مہان دارشنک اور گرمت دے مہان گیاتا تتویتا برہم گیانی بھائی صاحب بھائی گرداس جی، انہاں دا فرمان ورتمان وچ ورتدا ہوونہار سوئی پروانا. گرمکھ تے ورتمان وچ جیوندا ہے ایک چھن وچ، اور اس وچ جو کچھ ہو جائے ہو گیا ہے قبول پروان، اور جو ہو گیا قبول ہے پروان ہے. سمجھ لو یہ جو ہو گیا اس تو اچا اٹھ گیا، یہ تو سنسار تو اچا اٹھ گیا، کیونکہ سنسار وچ دکھ ہے سکھ ہے، ہاسے نے رونے نے، جنم ہے مرن ہے، نفع ہے نقصان ہے. سنسار وچ عزت ہے بےزتی ہے، تندرستی ہے بیماریاں نے، سوپن ہے کروپتا ہے. اچھا اٹھ گیا ایک دم وچ، جد ٹکیا تو ایک پرگٹ ہویا دو مٹ گئے، دو مٹ گئے سنسار مٹ گیا، ایک پرگٹ ہو گیا نرنکار پرگٹ ہو گیا. تو ایک دم وچ ہی پرگٹ ہو گئے گا. بہتے دم جو خرچ ہو گئے نے انہاں دی یاد وچ پرماتما کتھے، انہاں دماں دی یاد وچ تے کچھ دکھ ہون گے کچھ سکھ ہون گے. بیٹھا ہوندا ہے منکھ یاداں وچ، کدی دکھ دیاں یاداں کدی سکھ دیاں یاداں، کدی ملاپ دیاں یاداں کدی وچھوڑے دیاں یاداں، کدی سنتاپ دیاں یاداں کدی ملاپ دیاں یاداں. اس وچ جی رہا ہوندا ہے یا پھر بھوش دی چنتاواں دے جی رہا ہوندا ہے، یہ ملنا بھی ہے کہ نہیں، کامیاب بھی ہوواں گا کہ نہیں، نفع ہوے گا کہ نہیں. بھوش دی چنتا اس طرح دبدا وچ ڈبوئی رکھدی ہے. بھوش دی چنتا وچ منک دفاڑ ہویا بنیا رہندا ہے. ایک دم دیش تے بھوش مٹ جاندا ہے، ایک دم دیش تے بھوت کال مٹ جاندا ہے، ایک دم دیش تے ایک پرگٹ ہو جاندا ہے. وہ ایک آنند سروپ، وہ ایک آنند مئی. اس واسطے گروانی نے بھوش نو جال کہہ دیتا ہے، بھوت کال نو جال کہہ دیتا ہے. اور بھوت کال بھوش ایک گزرے ہوئے دن، آن والے دن، اور دن دن کر کے دن بھوت کال بندے جا رہے نے، دن بھوش دیاں چنتاواں دا روپ دھارن کردے جا رہے نے. تو سمے نو ناپن دا ڈھنگ دن تے رات ایک جال بن کے منک نو فسا رہے نے. جالی رین جال دن ہوا، جیتی گھڑی پھائی تیتی، رس رس چوگ چگے نت پھاسے، چھوٹس موڑے کون گنے دستے سہی. کیوں چھٹے گا اس جال تو؟
सतगुर की बाणी डंग भी दसती है, काल जाल जम जोहो न साके सच का पंथा फाट्यो। सच ते वर्तमान है, सच ते एक क्षण दे छे, सच ते एक सैकंड दे छे, और ओही एक सैकंड ओही एक क्षण ओही एक दम सच है। लंघ गए दम झूठ ने, आन वाले दम झूठ ने। एक छोटी जी गाथा है, धन गुरु नानक देव जी महाराज अगम्मी मौज दे च बैठे ते मरदाने नू कहिंदे ने, मरदाने आ तेनू अपने जीवन का किन्ना क भरोसा है, कितना तक तू जीवन की लालसा रखदा है, उम्मीद रखदा है, भरोसा रखदा है। सतगुरु की संगत काल मिटिया ते नहीं मरदाने की दुनिया च, अजे काल छोटा जरूर हो गया है। समा मिटिया ते नहीं, समा छोटा हो गया है। कहिंदा है पातशाह, सौ कदम तक चला अगे दा मैनू कोई भरोसा नहीं, अगला कदम मैं उठ सकांगा कि नहीं। तो कम से कम 200-300 दमां दा थे मरदाने नूं भरोसा है, इतने दम ते मैं ले सकदा। बाले नूं पुछदे ने, बालिया तू दस। तो बाला कहिंदा है पातशाह, मरदाने नूं 100 कदमां दा भरोसा होवेगा, मैं ते इक्को ही कदम दे भरोसे जी रहा, एक कदम जो पुटे है पता नहीं दूसरा कदम उठ सकांगे कि नहीं। तो 3-4 दमां दा भरोसा, समा बहुत सीमित हो गया, समा बहुत छोटा हो गया, काल बहुत छोटा हो गया। 3-4 दम दोवें हाथ जोड़ के पुछदे ने धन गुरु नानक देव जी नो, पातशाह थानू किन्ना क भरोसा है, थोड़े भरोसे नाल साडा बोध वधे, साडा ज्ञान वधे, थानू किन्ना क भरोसा है दसो। साहिब कहिंदे ने हम आदमी हां इकदमी मोहलत मौत न जाना, इकदम जो मोह दे चे बस इसे ते यकीन है, इन्ना एक भरोसा है एकदम दा, बाकी दा कोई भरोसा नहीं, बाकी दी कोई उम्मीद नहीं। और जिथे सुरत एकदम दे डिग गई उथे एक प्रगट हो गया, जिथे मन एकदम दे डिग गया मन मिट गया विचार खो गए उथे एक नूं प्रगट होण लई स्थान मिल गया, जगह मिल गई। जद भविष्य दी चिंता बहुत लंबी होवे, भूतकाल दियां यादां असीम आवन, सच नूं प्रगट होण लई थां नहीं मिलदी। सच ते वर्तमान विच प्रगट होंदा है, और जैसे सच प्रगट होंदा है सुरत एकदम विच टिकदी है, काल खो जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है, काल मिट जांदा है अकाल प्रगट हो जांदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ते कहिंदे ने सब समय दा तमाशा, सब काल दा तमाशा, क्या छोटे क्या वड्डे, क्या आम साधारण क्या देवी देवते, सब काल विच जी रहे ने। काल पाए ब्रह्मा बप दरा, काल पाए शूजू अवतरा, काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। सब समय दा तमाशा, सब इस काल विच जी रहे ने। ब्रह्मे जैसा महान दार्शनिक
विष्णु जैसा महान सतोगुणी, शिवजी जैसा महान तपेश्वर जपेश्वर, पर काल विच जी रहे, समय विच जी रहे, अजे समा मिटिया नहीं, अजे काल मिटिया नहीं, अजे काल मौजूद है, काल विच जीविया जा रहे। इस वास्ते गुरबाणी ने परमात्मा दा नाम रखे अकाल। वो मूर्ति मान है, पर ऐसी मूर्ति जो वर्तमान विच प्रगट होंदी है, अकाल मूरत। भविष्य दी चिंतावां विच नहीं, माजी दियां यादां विच नहीं। इसनू मैं पंजाबी रूप विच इस तरह बयान कीता है, माजी दियां यादां बस सागर दियां छल्लां, भविष्य दी चिंता बस गल्लां ही गल्लां, जीवन में सिखिया अज दे कोलों अज नूं मिला ते अजे ही मिला। इसनूं मैं उर्दू रूप भी दिता है, कुछ माजी की खाक हूं, कुछ मुस्तकबिल का नूर हूं, जीना अभी नहीं आया क्योंकि हाल से अभी दूर हूं। हाल वर्तमान, और जो हाल विच नहीं जी रहा उन्हों कहने ने ते बेहाल है। इते वर्तमान विच नहीं, इते एकदम विच नहीं, इते बेहाल है, इते भविष्य दी चिंतावां दे जी रहा, मुस्तकबिल दी फिक्र दे जी रहा, इते भूतकाल दियां यादां दे जी रहा, इते माजी दियां यादां दे जी रहा। ये वर्तमान विच नहीं, ये हाल विच नहीं, और जो हाल विच नहीं परेशान विच कहंदे ने बेहाल बेहाल बेहाल। इस वास्ते आम पद्धर ते भारत विच ईरान अफगानिस्तान विच पुछिया जांदा है, तेरा की हाल है, तेरा की हाल है, भाव वर्तमान विच है कि नहीं, एक प्रभु विच है कि नहीं, कि दो विच जी रहे हैं। सपना है जिन्नी देर तक चल रहे है, पर नहीं है अचेत अवस्था विच सपन, जागृत अवस्था विच मिट गया। है नहीं है, नहीं है, है स्वप्न है। स्वप्न विच मनुख कतल करे, शरीर ते मन ते ओही प्रभाव पैंदा है जो जागृत अवस्था विच मनुख करे। स्वप्न विच दुराचार करे, शरीर दी ओही हालत बनदी है, मन दी ओही हालत बनदी है जो जागृत विच। स्वप्न विच चोट लग जाए, जरब लग जाए, शरीर दी हालत मन दी हालत ओही बनदी है जो जागृत अवस्था विच। पर स्वप्न विच मिलाप होया है, कोई मिले है, उतनी ही खुशी आती है। कोई मन चाहा मित्र मिले है, कोई मन चाही वस्तु मिली है, स्वप्न विच मिली है, मन प्रभावित होया है, तन प्रभावित होया है। स्वप्न इस बारे असी ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं है, है, पर जितनी देर विच कहने है नहीं हो जाता है, और जद कहंदे नहीं है, है हो जाता है। जागृत अवस्था विच जो संसार है वो निंद्रा अवस्था विच नहीं हो जाता है, स्वप्न अवस्था विच नहीं हो जाता है, और स्वप्न अवस्था विच जो संसार है वो जागृत अवस्था विच नहीं हो जाता है। जागृत अवस्था का जो साडा संसार है वो स्वप्न अवस्था विच विलीन हो जाता है, और जो स्वप्न अवस्था विच संसार है वो जागृत विच खत्म हो जाता है। तो हुण किस नूं सत कहिए ते किस नूं मित कहिए, किस नूं कहिए है ते किस नूं कहिए नहीं है।
ਤੋ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਹੈ ਸਵਪਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਲਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਿਟ ਗਿਆ ਸਵਪਨ, ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਹੈ ਜਾਗਰਤ ਔਰ ਜਾਗਰਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਐਸਾ ਚੱਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਵਿਛੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਚੂੰਕਿ ਜੀਵਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਜਾਗਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਗਤ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਵੀ ਸਵਪਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਝ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਰਾਤ ਦਾ ਸਵਪਨ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਜੋ ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਪਨ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਪਨਾ ਹੈ, ਸਵਪਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਵਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਫੀਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਿਛੜਿਆ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮਨ ਨੂੰ, ਤਨ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਰਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਤੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮਿੱਥ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਮਿੱਥਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ, ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਤ ਮਨੁੱਖ ਜੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਫ਼ਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਭਰੇ ਸੁਪਨੇ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਸਮਾਦ ਭਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਅਸੀਂ ਰੋ ਰਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਖੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਪਨੇ ਚ ਕੋਈ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਬੜੇ ਦੁਖੀ। ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੁਪਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਰਸ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਵਪਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਰਸ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਭੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨਾ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਖੋਏ। ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਸੁਪਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਵਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਿੰਦਰਾ ਦੇ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਨਿੰਦਰਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨ ਚੱਲਦਾ। ਨਿੰਦਰਾ ਅਵਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਸਵਪਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਗਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨੀਂਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ, ਐ ਭਾਗਾਂ ਭਰੀ ਨੀਂਦ ਆ ਤੂੰ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਝਲਕ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਸੁਪਨੇ ਚ ਆਨੰਦ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਮਿਲਾਪ ਭਰਿਆ ਸੁਪਨ, ਸੁਖ ਭਰਾ ਸੁਪਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛਣ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਭਰਾ ਸਵਪਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਰਾਤੀ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉੱਠਣ ਉਪਾਸ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਰਾਤ, ਹੌਕੇ ਨੇ ਤੋ ਹੌਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੌਕੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਰਾਤ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹੇ ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਉਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਤੁਛ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਛੋਟਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਨ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਰਸ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਪਹਿਰ
सौ जुगे समाने रैन भई तब अंत न जाने। दिन दे चार पैर चार युगा वर्गे हो गए, नहीं लंघदे नहीं लंघदे। एक एक युग हजारां साल वर्गा लखां साल वर्गा नहीं लंघदे। इन्ना लंबा हो गया कल्पना नहीं, ये सच है। चार पहर चौ जुगे समाने रैन भई तब अंत न जाने। आई ये रात पता नहीं कितने युगा वर्गी है, कह नहीं सकते। दुख दे समा बहुत लंबा हो जाता है, नरक दुख है। ईसाई जगत नु इसकी व्याख्या करनी नहीं आई, उन्होंने कहा नरक हमेशा लई है, सदैव ही है। शायद इस वास्ते नीतीश जैसे विचारक ने कह दिता कि मैं धार्मिक क्यों नहीं हाँ, मैं क्रिश्चियन क्यों नहीं हाँ। कहिंदे जो मैं गुनाह कीते ने, जो मैं पाप कीते ने, और जिन्हां गुनाहां बारे मैं सोचिया सी, अगर मैं किसे अदालत नु दस दिया तो सख्त मजिस्ट्रेट भी मैनु चार साल तो वध जेल दी सजा नहीं दे सकदा। लेकिन मैं खुदा नु मनिया नहीं, इसे एक गुनाह करके वो मैनु हमेशा लई नरक, हमेशा लई। और ऐसा नरक जिथे जंबूरां नाल मास नोचिया जांदा होवे, जिथे दलदल दे सुटिया जा रहा है, जिथे उबलदे तेल दे तलिया जा रहा है, जिथे जिंदा मनुख दी जबान कटी जा रही है, बंद बंद कटे जा रहे ने, नरक दा ए नक्शा। तो ए विचारक कहिंदा है फिर उस खुदा नू रहीम कहण दी, रहमान कहण दी, प्रसाद कहण दी, दयालु कहण दी, करुणाकर कहण दी लोड़ की है। बहुत सख्त है, उते बहुत जालम। दरअसल व्याख्या करनी ना आई, नरक दुख है, स्वर्ग सुख है। सुख दे समा छोटा हो जाता है, दुख दे समा लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। एक घड़ी दिनस मुख बहुत दिहाड़े, मन न रहे कैसे मिलो प्यारे। एक पल दा विछोड़ा और उसका दुख, ये एक पल ते कई दिनों वर्गा है, नहीं लंघदा नहीं लंघदा। दुख दे बहुत समा लंबा हो जाता है, काल बहुत लंबा हो जाता है। सुख दे काल छोटा हो जाता है, परम आनंद काल खत्म हो जाता है, अकाल प्रगट हो जाता है। एक सैकंड दे एक क्षण देच एक दम देच भूत खो गया, भविष्य खो गया, अकाल प्रगट हो गया, काल ते खत्म हो गया। लेकिन बहु गिनती मनुखी दुनिया दी काल देच जी रही है। मनुख दे कोल सिमरति है, इस सिमरति कदी अगे जांदी है, कदी पिछे जांदी है। जदे भूतकाल दी तरफ जांदी है तो भूतकाल दा चिंतन बन जांदी है, जद भविष्य दी तरफ जांदी है तो चिंता बन जांदी है। तो चिंतन चलदा है भूतकाल दा, चिंता चलदी है भविष्य दी। ये किस तरह मिटे? धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करदे ने, मैं जिथे तक देखदा मनुख चिंता विच जी रहा है, भविष्य बहुत लंबा हर एक ने बनाया है, बहुत लंबा बहुत लंबा। चिंतत ही दी से सब को है, सारी चिंता विच दिखाई दे रहे, सारिया ने बड़ा लंबा भविष्य बना रखे और चिंता भविष्य दी। यही कारण है कि कदम कदम ते बाजारां च बैठे ज्योतिषी मिलणगे, उन्हां नूं भी पता है हर मनुख जी रहा है भविष्य दी चिंता दे च। जरूर पूछेगा भविष्य कैसा है, भविष्य कैसा है,
भविष्य कैसा है, भूतकाल कैसा है, कुछ इस नुचेत है, गुजरिया हुआ कल कैसे सी, गुजरिया हुआ साल कैसे सी, गुजरे 50 साल कैसे सन, चेते ने आने वाला कल किस तरह होवेगा, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ये तो ठीक है कि 50-60 साल तो कोई पिछे जाए, 5 साल दी जद जिंदगी होवे उस तो पिछे मनुख दियां यादां नहीं जांदियां, भुल गया है। हां किसी किसी दी सिमरती ये शक्ति ज्यादा होंदी है, उस जन्म दी दीवार नु तोड़ के अगले जन्मां च भी पहुंच जांदी है। पिछोकड़ बहुत कुछ दिसदा है, बहुत कुछ दिसदा है, और भविष्य भी वो देख लेंदे ने और सही देखदे ने। मनुख दा भविष्य है परमात्मा होना, भावे अज हो जाए भावे कल होवे, परमात्मा होए बिना ये चिंता मिटनी नहीं, ये भविष्य मिटना नहीं। पर यादां मासी दियां भूतकाल दियां यही बोझ मनुख ढो रहे है, इसी बोझ दे तले मनुख दबे होया है, यही भार चुकी फिरदा है। कहिंदे ने भाई साहब भाई नंद लाल अद्धी रात नू बैठे ने, मुंह लंबे लंबे होके निकल रहे ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दी चहल कदमी आप दे कन्ना विच होकियां दी आवाज पई, जिधरों होके आ रहे सन गए देखे आए ते नंद लाल नू भी महसूस होया मेरे कोल कोई खड़ा है, गौर नाल देखिया ते सतगुरु कदमां ते डिग गए। पातशाह कहिंदे ने नंद लाल रात बड़ी स्याह है काली है, हां महाराज बड़ी काली है, सब कुछ काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज काला दिखाई दे रहा है, सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, हां महाराज सारा आसमान काला दिखाई दे रहा है, 10 क्यों काला दिखाई दे रहा है, ये क्यों काला है। तो नंद लाल सोचदे च पै गए, हाथ जोड़ के कहने पादशाह मैं शायर हां कवि हां आपदा अदना सेवक हां सिख हां, मैं विज्ञानक नहीं, मैं की जाना आसमान काला क्यों है। पर सतगुरु कहने तू तस्लीम कीता है शायर है कवि है, तो कवि दी अपनी कल्पना दी परवाज भी होंदी है, शायर दे अपनी तखयल दी परवाज भी होंदी है, उडारी होंदी है। चल तू अपने तखयल दे आधार ते कल्पना दे आधार ते दस आसमान दा रंग काला क्यों है। रंगश कबूद कर दिले अज पुरुष और आर साख्त, अज बस के दूदे आहे मन अज आसमान गुजस्त। हे मेरे पातशाह मेरे तड़पे हिरदे चो जड़े होके निकले ने, ओ जद आसमान तक पहुंचे ने, उन्होंने ही साड़ के काला कीता है। पादशाह ने गलवकड़ी च लै लिया, इतने काल दे भार थले तू जी रहे हैं। अकाल पुरख रहमत करन बख्शिश करन, काल खत्म हो गए अकाल प्रकट हो गए, अकाल महा आनंद है, अकाल वर्तमान है, काल भूतकाल है, काल भविष्य है, और काल भविष्य की चिंता है, काल भूतकाल दियां यादां ने, पर अकाल ना भूतकाल दियां यादां ना भविष्य दियां चिंतावां, परम आनंद प्रगट हो गया, अकाल प्रगट हो गया। भगत कबीर कहिंदे ने
दिन सुरैन वेद नहीं शास्त्र, तहां बसे निरंकारा कहत कबीर नर तिसे ध्यावो बावरिया संसारा। ऐ पागल संसारियो, वाकई जो भूतकाल दियां यादां च बैठा है उन्हों किस तरह सियाणा आख्या जा सकदा है, जो भविष्य दियां चिंतावां दे च डुबिया होया है उसनू किवें सियाणा आख्या जा सकदा है। सियाणा ते ओ जो वर्तमान दे च ही रहा है, अकाल दे च ही रहा है, काल दे च नहीं। अकाल दे जीण वाला काल दियां सारियां फाइयां नू तोड़ के रख देंदा है, काल दे जाल नू तोड़ के रख देंदा है। तदी के सतगुणा दी बाणी फरमान कर दिए, काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाठ्यो। इसे नू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान कर देने, अकाल है अजाल है, हे प्रभु तू अकाल है, तेरे उत्ते काल दा जाल नहीं है। और मिट जांदा है समाधि दे समा, खो जांदा है काल। समस्यावां ते भविष्य दियां ने, समस्यावां ते माजी दियां सन, तो यादां समस्या समस्यावां दी यादां कुछ भूतकाल नाल संबंधित है, कुछ भविष्य नाल संबंधित ने। मिट गईया सारिया समस्यावां क्योंकि वर्तमान एक क्षण समाधि। या मनुख समस्या च जीवदा है या समाधि, समाधि अकाल है, समस्या भूत है, समस्या भविष्य है, समाधि अकाल है। अकाल दा चिंतन समाधि लीन कर दें, अकाल दी याद काल नु मिटा के रख देंदी है। अकाल दा चिंतन सच दे मार्ग ते चलना है और सच तक पहुंचना है। काल जाल जम जो हो न साके, सच का पंथा ठाठ्यो।

ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀਏ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਰਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਦਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਟੀ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਨੇੜਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੇੜਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਉੱਥੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਦਰ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਓਪਰਾਪਣ ਹੈ। ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਸਭ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਭ ਓਪਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਬੁਰਕੇ ਦੇ ਚ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੁਰਕਾ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨੰਗੇਜ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਢਕਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਢਕਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੇਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੜਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੜਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਬੁਰਕਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਰਾ ਹੈ, ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁਝ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਓਪਰਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਉਘਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਵੀ ਚੀਰ ਕੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਗਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਇਸਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ, ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਤੋ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਪਏ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬੇਗਾਨੇ ਨੇ, ਓਪਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਦਾਗੀ ਥਾਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਪੰਗ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਢਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਛੁਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਨਗਨਤਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਨਗਨ ਹੈ, ਨਗਨ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਢਕਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਨਗਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗੇਜਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਲੋਭ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸਦਾ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸਦਾ ਨੰਗਾ ਸਰੀਰ ਕਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਕੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਬਦਬੂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਦਰ ਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਗੰਦ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦੌਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ
ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਾਲ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਨਗਨਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੁੱਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਢਕਿਆ, ਬੜਾ ਢਕਿਆ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵੀ ਨਗਨ ਬਣਾਈਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਨ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਔਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਵੀ ਚੱਲੇ, ਨਾਂਗੇ ਸਾਧੂ, ਨੰਗੇ ਸਾਧੂ। ਸਾਧੂ ਹੋਣ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੰਦਗੀ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਢਕੇ। ਫੁੱਲ ਨੰਗੇ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਛਿੱਦਰ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਜ਼ਖਮ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਜਦ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਰੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਪੱਟੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ, ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ। ਹਮਾ ਤਨ ਦਾਗ ਦਾਰ ਸੁਦਮ ਪੁੰਬਾ ਕੁਜਾ ਕੁਜਾ ਨੇ ਹਮ। ਇਹ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੰਬਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਟੀਆਂ ਇਤਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਿਬਾਸ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਗਏ। ਵਰਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪਸ਼ੂਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਂਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨੰਗੇ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਨਤਾ ਲੋਭ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਨਤਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਗਨਤਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਜੈਸੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪਕਸ਼ੀ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਕੱਪੜੇ ਵਧਦੇ ਗਏ, ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਕੱਪੜੇ। ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਰਿਹਾ ਭਲੇ ਮਾਨਸ ਹੈ, ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੰਗਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਨੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਲੰਘਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਢਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੰਗਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਲ ਕਲ ਵਾਲੀ ਕਾਮ ਮਦ ਮਨੁਵਾ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੋ ਕਬਾਬ, ਕਬਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਜੁੜ ਗਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕਬਾਬ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ? ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਹਲਵਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਮਿਠਾਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਰੋਟੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਅੰਬ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਕਬਾਬ। ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਦੁੱਧ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਦਹੀਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਘੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਔਰ ਕਬਾਬ, ਕਬਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਕਬਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਰੈਵਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
खाना है कबाब जरूर खा, पर जिस तरह का ढंग मैं तेनू बनाने का दसदा कबाब ओ खा। शराब पीनी है जरूर पी, पर जेडी मैं बनाने का ढंग तेनू दसदा ओ पी। बन शराबी, बन कबाबी, ऐसा शराबी ऐसा कबाबी कि परमात्मा भी तेनू सीने नाल लाण ते मजबूर हो जाए। किसे वक्त सतसंग नो मैखाना कहा जांदा सी, अज ते खेड़ी कुछ होर होगी, सिलसिला कुछ होर हो गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने ए युग कलाल है। अगर ए कलाल है तो इसदे कुल शराब केड़ी है। कल कल वाली काम मद, इसदे कुल काम दी शराब है। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामी। धन भगत रविदास जी महाराज, हे प्रभु तू जगत दा स्वामी, असि इस युग दे कामी, तो तालमेल किस तरह बैठे। एक दौर ऐसा भी लंघिया, हर पासे धर्म दी प्रदर्शनी सी, धर्म दी नुमाइश सी, बाहरों भी डुल डुल के धर्म पैंदा सी, गल दे च माल है, हत्थां च माल है, घर दे च मालां लटकियां हुई ने, ग्रंथ पए ने, तमाम धार्मिक साजो समान नाल घर सजे हुए ने, और घर विच भी जाके ऐसा पता चलदा सी जैसे मंदिर है, धर्मशाल है। दौर बदलिया, घर विच बार बन गई, घर विच बोतलां आ गई, घर विच वैश्याले बन गए। हैरानगी दी गल, पहले घर मंदिर सन, घर धर्मशाल सन, हुण ते बहुते धर्मशाले भी किसे हद तक मैखाने ही ने, भ्रष्टाचार दे अड्डे ने, दुराचार दे अड्डे ने। दौर बदले है, समय दा प्रभाव, महाराज कहंदे ने कलाल है ए युग, और ए बना रहा है काम दी शराब। ज्यादा चर्चा इसे दी है, ज्यादा यही देखिया जा रहा है टीवी ते, अखबारां दे, इश्तहारां दे, तरह तरह दे मैगजीन, तरह तरह दे गंदे नावल, जिनसियात नाल भरियां हुईयां कहानियां, हर पासों उजागर काम दी प्रदर्शनी, काम दी नुमाइश। आखिर मनुख कोल जो कुछ होवेगा उसे दी प्रदर्शनी करेगा, आखिर मनुख कोल जो कुछ है वही बाहर प्रगट करेगा। कामी काम जीवन दी एक वक्ती लोड़ हो सकता है, काम जीवन नहीं हो सकता। लोड़ कतई जीवन नहीं आती। इसनों जिस आलमाना ढंग नाल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बयान किया है, आप दे सामने रखा। पंकज फाते पंक महामद गुंथिया, अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया। पंकज, पंक कहंदे ने चिक्कड़ नू, पंकज पंक दे चो जमया, चिक्कड़ दे चो पैदा होया पंकज। पंक ने जन्म दिता है, चिक्कड़ ने जन्म दिता है पंकज। तो चिक्कड़ किस नू जन्म देंदा है? चिक्कड़ एक चोटी दे फुल नू जन्म देंदा है, जिसनू कमल कहंदे ने, जिसनू सौरभ कहंदे ने, जिसनू कंज कहंदे ने, जिनू पदम कहंदे ने, जिनू सारंग कहंदे ने, जिसनू बारिज कहंदे ने। धार्मिक ग्रंथां दे गालमन इसदे 18 नाम ने, और ये धर्म दा प्रतीक है। अगर कोई धार्मिक मनुख है तो कह दिता जांदा है ते कमल दी तरह। भारत दे मंदिरां दे गुंबद कमल ने। बोध भिक्षु जद सवेरे सवेरे भिक्षा लई चलदे ने, हद च कमल दी पंखड़ी लेके,
ताकि एहसास रहे विचर रहे हैं बाजार दे कलियां दे कमल दी तरह रहना है डुबना भी नहीं भिजना भी नहीं। महाराज कहने पंकज फाते पंक जो पंक तो जमया सी चिक्कड़ तो जमया सी महाराज कहने चिक्कड़ी ची फस के रह गया पंकज फाते पंक पंकज पंक दे फस के रह गया। कदी ऐसा होंदा है सरोवर दा पानी सुकन लग पैंदा है ते बाहर दे जल झरने जो इस विच आ रहे सन वो अवरुद्ध हो जांदे ने रुक जांदे ने पानी नीवा होण लग पैंदा है और इतना नीवा कि चिक्कड़ दिखाई देण लग पैंदा है और वो कमल जो बहुत उपर उठाया होया सी चिक्कड़ दे नेड़े चला गया है पानी दे आसरे थे बहुत उच्चा उठिया सी बहुत उच्चा उठिया सी नीवा चला गया थल्ले चला गया। लेकिन अचानक जोर दी बारिश हो गई चारों पासे दा जल झरना झरनिया दा रूप धारण कर सरोवर दी तरफ आया और सरोवर बड़ी तेजी नाल भरन लग पया। जितनी तेजी नाल पानी उच्चा हो रहा है इतनी तेजी नाल कमल उठ ना सकया। जितनी गति नाल पानी ऊपर उठ रहा है ये गति कमल अपनी बना ना सकया। होया कि पानी ऊपर चला गया कमल थल्ले चला गया चिक्कड़ तो जमया फिर चिक्कड़ दे फस गया। पंकज फाते पंक महामद गुंफिया अंग संग उरझाए बिसरते सुंफिया ऐसा चिक्कड़ विच उलझे है अपनी सुगंध ही भुल गया अपना स्वप्न ही भुल गया चिक्कड़ तो जमया सी हुण अपने आप नूं चिक्कड़ ही समझ बैठा। जन्म काम तो है अगर जीवन भी काम बन जाए तो चिक्कड़ तो जमया ये कमल चिक्कड़ विच लीन हो गया चिक्कड़ चिक्कड़ ही बन के रह गया चिक्कड़ कमल नहीं हो सकया। काम राम हो जाए तो चिक्कड़ कमल बन गया काम सिर्फ काम ही रह जाए तो कमल चिक्कड़ विच फस के रह गया। ये उदाहरण बड़ा सुंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दिता है काम तो जमया ए जीव काम दे ही फस के रह गया। चारों पासे अज नाटक फिल्मा मैगजीन इश्तियारी दुनिया अखबारी दुनिया टीवी दी दुनिया रेडियो दी दुनिया समाजिक दुनिया राजनैतिक दुनिया हता के धार्मिक दुनिया भी काम दी नुमाइश तो बिना और कुछ रह नहीं गई। चारों पासे इस दी प्रदर्शनी कारण ए जड़ा युग है एक कलाल है ही दे कोल शराब यही शराब है। मनुखा नू किसे होर सरूर दा पता ही नहीं किसे होर नशे दा पता ही नहीं। दुनिया दे सारे नशे भी काम दे आले दुआले मंडला रहे ने और काम परबल नशा जिस दे मनुख बेसुरत मनुख बेहोश। ये गल वखरी है कि इतना खुल के इस विषय ते इतना बोलिया नहीं गया लिखया नहीं गया और जद किसी ने कुछ लिखया है तो उस ग्रंथ नु धर्म ग्रंथ नहीं आख्या गया जद कोई बोलिया है तो उन्हां बोलां नु धार्मिक बोल नहीं आख्या गया। हद हो गई जिस तो जीवन जमे है उस मन दे बोल इनु एक पासे रख दिए धर्म दा हिस्सा ना मानिए तो फिर ए ते इंज होई जिवें कह दिए जन्म ही नहीं होया या जिथों जन्म होया असी इस मनते ही नहीं। जीवन उदों सफल हो जांदा है कि जम्मे काम दे चां ए लीन होवे राम दे च यात्रा सफल हो जांदी है। चिक्कड़ तो जमे है पर चिक्कड़ ते पानी दोहां तो उच्चा उठे काम तो जमे है
पर एक काम ते पदार्था दोहां तो उच्चा उठे, पानी तो भी उच्चा उठे। कई दफा जोर नाल वदया या पानी भी डुबो के रख देंदा है, उपर नहीं उठन देंदा। अचानक धनवान हो गया है, अचानक सता मिल गई है, प्रभुता मिल गई है, बड़ी तेजी दे नाले धन संपदा आई है, नहीं संभाल सकया, गर्क हो गया, डूब गया। आहिस्ता आहिस्ता जब सरोवर दे पानी पैंदा है, आहिस्ता आहिस्ता फुल भी उपर उठता रहिंदा है, पर विरले कोई फुल ने ऐसे जो तीबर गति दे अपने आप नू तीबर गति च उठा सकन। पानी दा वेक बड़ा तीबर होवे, बड़े तीबरता दे नाल पानी वद्दा जा रहा है, उच्चा हो रहा है, और इसी तीबरता दे नाल वो अपने आप नू उच्चा कर सके, कठिन हो जांदा है, औखा हो जांदा है। काम ही एक शराब है जो एक कलाल अपनी दुकान ते सजा के बैठा है, वेच रहा है, पी रहा है, पिला रहा है। कल कलवाली काम मद मनुआ पी मनुहार, क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। ए समा ए युग ते कलाल है, काम दियां बोतलां काम दी शराब सजा के बैठा है, पर किस प्याले विच पीती जांदी है और साकी कौन है, पिलाण वाला कौन है। कहिंदन कलाल होवे शराब होवे, प्याला नहीं साकी नहीं तो मैं खाने दा रंग नहीं जमदा। इस कलाल दा जो मैखाना है रंग जमे आया है। काम मद कल कल वाली, काम मद मनुआ पीवण हार, क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। प्याला है क्रोध दा, साकी है अहंकार, और शराबी शराब दे पीण वाला है मनुख दा ए मन। तन भावें सारियां दे पानी पीण वाले हवन, मन ते सारियां दे शराब पीण वाले। तन भावें दुध पीण वाले हवन, मन ते सारियां दे शराबी ने। ए गल वखरी है, दिस पैंदा है ए मुंह नाल दुध पी रहा है, मन नाल शराब पी रहा है। मुंह नाल भोजन छक रहा है पर मन नाल ते शराब ही पी रहा है, शराब ही। काम दी शराब, शराब दा काम की है बेहोश करना। काम वासना एक ऐसी बेहोशी है जिस विच मनुख नू अपना नाम धाम कुछ भी चेते नहीं रहिंदा। कहिंदे जन्म दा कारण भी बेहोशी है, मरण दा साधन भी बेहोशी है। बेहोशी च जमदा है, बेहोशी च मरदा है। बेहोशी दे च मरण दी क्रिया चल रही है और बेहोशी दे च ही जन्म दी क्रिया चल रही है। बेहोशी हावी है, जब काम दे च होश हो गया है तो फिर मरण दे च भी होश होवेगा, और जिसका मरण दे च होश हो गया है ना फिर जन्म ना फिर मरण, फिर तो अगम्मी दुनिया दा वासी हो जाता है। बहुत वड्डे अपराध करने अवन तो कई दफा मनुख अपने आप नू थोड़ा बेहोश करता है, शराब पींदा है। ते जे काम दी शराब दा नशा मनुख दे मन नू हर वक्त चढ़िया होवे तो इस दियां अखां ते हर वक्त मैलियां रहणगियां, इस दा तन ते हर वक्त मैला रहेगा। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने, क्रोध कटोरी, क्रोध दा एक कटोरा है, प्याला है, मुंह भरी, मुंह दे च क्रोध भरया है, मुंह कटोरा बनया होया है, एदे च की है,
काम दी शराब और क्रोध कटोरा बनया है, क्योंकि क्रोध ते मुंह दे राही ज्यादा प्रगट आंदा है। भावे क्रोध अखां च भी प्रगट आंदा है, भावे क्रोध हथां च भी प्रगट आंदा है, भावे क्रोध चेहरे ते भी प्रगट आंदा है, पर क्रोध की अस्थूल क्रिया बहुती जबान तो प्रगट आंदी है। और जब जबान चो क्रोध निकलन लग पवे तो जबान सख्त आउंदी है। कहिंदे ने जबान की सख्ती परमात्मा नूं पसंद नहीं। खुदा को न मंजूर थी सख्ती जुबान में, इसीलिए न हड्डी रखी जुबान में। जबान दे च उसने हड्डी नहीं रखी, सख्ती नहीं चाहिदी जबान दे। और जो जबान दे सख्ती ले आया है, समझ लो जबान दे च हड्डी आ गई है, इहदे हलक दे च हड्डी आ गई है, इसकी जबान सख्त हो गई है। घरेलू बहुते कलेश जबान की सख्ती तो पैदा होते हैं। बहुत सारे संघर्ष ते लड़ाइयां दा कारण मनुख दी अखां नहीं ने, मनुख दे कन नहीं ने, मनुख दी नासका नहीं है, मनुख दे हाथ पैर भी नहीं, मनुख दी जबान है। अगर कल कलेश दा मूल केंद्र लभांगे किस कारण करके होया है, तो जबान ही मिलेगी। क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। पिलावा कौन है, साकी कौन है? अहंकार पेश करने वाला अहंकार, मैं हां। जितना अहंकारी मनुख होवेगा उतना क्रोधी होवेगा, जितना अहंकारी मनुख होवेगा उतना ही कामी होवेगा। ताई ये दोवां दा कट्ठा जिक्र कीता मेरे पातशाह दी बाणी ने, काम क्रोध काया को गाले ज्यों कंचन सोहागा डाले। जिवें सोने नूं सोहागा डाल के रख देंदा है, काम ते क्रोध मनुख दी काया नूं गाल के रख देंदा है। काया दे बहुत सारे क्रोध, काया दे बहुत सारे रोगां दा मूल कारण असीम क्रोध असीम काम। अगर काम सीमा दे चाहे तो क्रोध खत्म हो गया है, इस मनुख की काया कंचन वर्गी हो सकती है। कंचन वर्गी काया, जे प्रसाद अरोग कंचन दे ही लिव लावो तिस राम सने ही। सोना की सोना होवेगा काया ही सोना है, काया ही कंचन है। पर काया नूं कंचन बनाना किसे किसे नूं आंदा है, काया नूं लोहा बना के और जंगाल ला देना इस सब नूं आंदा है। और गुरु नानक ने इसका बड़ा जिक्र किया, कल कल वाली काम मद मनवा पीवण हार, क्रोध कटोरी मोह भरी पिलावा अहंकार। मजलिस भी चाहिए, शराब कली किवें पीए, कोई महफिल कोई साथी, यही कारण है शराबी साथी लभ देना है, साथ लभ देना है। तो मजलिस वास्तविक केड़ी है, महाराज कहते हैं मजलिस कूड़े लभ दी पी पी होए खुआर, झूठे लोभ दी महफिल। झूठ क्यों कह देता, लोभी झूठा ही होता है। झूठ क्यों कह देता, जीवन सीमा दे चै लोभ असीम है। कितना जीवेगा, 100 साल, चलो 150 साल तक जी रहेगा। जीवन दी सीमा है, मनुख दे लोभ दी सीमा नहीं है। अज तक किसी भी पैमाने नाल मनुख दा लोभ नापिया नहीं गया। ये गल वखरी है, हिमालिया दी बुलंदी नाप ली गई है, प्रशांत महासागर की गहराई नाप ली गई है, सूरज चंद तारिया की बुलंदी नाप ली गई है। ये लोभ किथे खत्म होता है, सीमा अजे भी पकड़ च नहीं आई। किथे खत्म होगा, किथे गल मुकेगी। इति सहस खटे लख को उठ धावे, तृप्त ना आवे माया पाछे पावे। कहिंदे ने
एक राजे ने एक भिक्षु नो बौद्ध भिक्षु नो बेनती की थी, बड़ा आनंद दिखाई देंदा है थोड़े को, बड़ा सरूर बड़ा रस, साड़ी झोली च भी पाओ। ये भिक्षु कहन लगा, अच्छा मैं कल जब थोड़े द्वार ते भिक्षा मंगण आवांगा तो कुछ भिक्षा मैं थोड़ी झोली च भी पा देंगा, तुसी पदार्थ मेरे पात्र विच पाणा, परमात्मा दी कुछ गल्लां मैं थोड़े पात्र विच पाण दी कोशिश करांगा। और अक्सर संत ते संसारी पदार्थ ते परमात्मा दा वट्टा सट्टा करदे ही रहने, वो पदार्थ झोली च पा देंदे रहने, वो परमात्मा दी गल सुना देंदा रहे, आदकाल तो ऐसा चलदा रहे। राजा खुश होया और कहन लगा, ए भिक्षु फिर कल सब तो पहले साढ़े घर ही आना, इत्थे ही आना, असी भिक्षा लेके खड़े होवांगे। अक्सर बौद्ध भिक्षुआं नूं भिक्षा देण लई भिक्षा दाते बार खड़े होंदे ने और देंदे ने, जिथे जिथे बौद्ध धर्म है ये दृश्य बहुत देखण नूं मिलदे ने। राजा भिक्षा लेके पके हुए पकवान तरह तरह दे बार लेके खड़ा है, भिक्षु पात्र ले आया और आखिया, राजन पाओ। वो खीर पाई, राजे ने थल्ले डुल गई। भिक्षु ने किया, होर पदार्थ पाओ। राजे ने सोचा शायद कोई करामाती गल होवे, पात्र आपे ठीक हो जाए, तो फिर हलवा पाया, पूड़ियां पाईया, थल्ले डिग गई। होर पदार्थ पाओ, तरह तरह दे बने हुए होर पकवान उस पात्र दे पाए, पकवान थल्ले बिखर दे गए, गिर दे गए। भिक्षु दा पात्र अगे है। राजा कहिंदा है, ऐ भिक्षु तुसी भिक्षा मंगण ते आ गए और राज द्वार ते आए, पर कम से कम अपना भिक्षा पात्र ते वेख लेंदे, ये ते टूटिया होया, इहदा थल्ले पेंदा ही नहीं है। राजन फिर मैं यही गल तैनू आखा, तू रब दी गल मैथों सुनना चाहना है, परमात्मा दा ज्ञान मैथों लेना चाहना है, तैनू अपना छलनी मन नहीं दिखाई देंदा। तेरे दित्ते हुए पदार्थ मेरे पात्र तो डुल गए, मेरा दित्ता होया परमात्मा दा ज्ञान भी तेरे पात्र तो डुल जाएगा। पहले अपना पात्र ठीक कर, भिक्षा मिल जाएगी। पहले अपना मन ठीक कर, भगवान मिल जाएगा। मजलस कूड़े लबदी पी पी होए खुआर, इस शराब नूं पी पी के दुनिया खुआर हो रही है और अपना जीवन अजाई गवा रही है, लेकिन शराब नाल कबाब जुड़े हुए है। और अक्सर जब शराब दी गल चले शराबो कबाब, कबाब दी गल चले शराबो कबाब, कबाबो शराब, शराब कबाब खांदे हो। हालांकि एक पीण वाला है एक खाण वाला है, पर शराब नाल कबाब जुड़ गया। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने कबाब खाने ने, तो जिस ढंग नाल मैं तेनू जबा करन नू दसदा, बकरे नू इस ढंग नाल जबा कर। और जब तू उस छुरे नाल जबा करेगा और मेरे दसे ढंग दे मुताबिक करेगा, तो जब उस बकरे च खून निकल जाएगा, जान निकल जाएगी, वो जड़ा मांस होवेगा जे किधरे तू खा लवें, कदी जिंदगी तेनु भुखी नहीं लगेगी। हर वक्त रजिया रहेगा, हर वक्त त्रिपत रहेगा। तो जे हुण पुछिए, बाबा केड़ा छुराया हो, गुरु नानक दे बोल बड़े कीमती है। सच की काती सच सबसार, छुरा होवे सच दा,
सच नू छुरा क्यों कह दिता? सच ऐसा छुरा है कि दो धारा खंड है और दो नोका खंड है। सच बोलांगे दूजे नू भी चुभदा है, अपने नू भी चुभदा है। कि दूजे नू भी घायल करेगा, अपने नू भी करेगा। इस वास्ते सच बोलना कठिन है, कठिन है। कि दूजे नू चुभेगा पर अपने नू भी चुभेगा, और जद चुभेगा कटेगा तो छुरे दा एक कम है। जद किसे दी गर्दन कटे, किसे दे अंग नू कटे, किसे नू चुभे तो खून ते निकलेगा। अगर सच दे छुरे नाल जबा करिए और सच दा छुरा ए चुभे दो दारा तो झूठ ते निकलेगा। झूठ दा ही खून मनुख दे अंदर है, खून नहीं है, झूठ है मनुख दे अंदर। बाहर दे छुरे नाल शरीर चो खून निकलदा है, सच दे छुरे नाल कोई जबा होवे अंदरों झूठ निकलदा है। सच की काती सच सब सार, घाड़ तिसकी अपर अपार। ये जो सच दा छुरा है इदा लोहा सच है, इसकी जो धारा है घाड़त है वो भी सच है। किसका कुठा होवे सेख, लहू लब निकथा वेख। अगर इस छुरे नाल जे किधरे कुठा करें, दो तरीके ने, कुठा झटका। एक झटके नाल गर्दन अलग की थी, झटका। आहिस्ता आहिस्ता रेत के गर्दन अलग की थी, इनू कुठा कहंदे ने, कोहना आहिस्ता आहिस्ता। जे तू इस ढंग नाल आहिस्ता आहिस्ता कोवे, सच नू सहजे उचारण करना पैंदा है। और सच की है परमात्मा दा नाम, ये पहले जबान ते आवे तो जबान दे चो हड्डी निकलेगी, जबान दे चो सख्ती निकलेगी। ये हो नहीं सकदा, जिस जबान ते राम है उस जबान दे सख्ती होवे, जिस जबान ते वाहेगुरु है उस जबान ते क्रोध होवे, ये हो ही नहीं सकदा। जहर इस गल दा सबूत है, अजे जबान ने अमृत दा रस नहीं माने। सख्ती इस गल दा सबूत है, ये जबान जबान नहीं रह गई, क्योंकि जबान दे हड्डी नहीं आउंदी, जबान दे सख्ती नहीं आउंदी। जबान दे हड्डी आ गई है, ये मांस दा टुकड़ा ते बन के रह गई, जबान नहीं है। तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखत्था वेख। परमात्मा दे नाम नु छुरा कह देता है गुरु नानक ने, ऐसा छुरा है को के रख देगा। छुरे ने कोना है तो निकलेगा की, निकलेगा काम, निकलेगा लोभ। एक कसाई छुरा फेरदा है बकरे थे, निकलदा है खून। बाद देच आंदरा ओजरी कड़ के परे सुटदा है। पर सच दे छुरे नाल जद किसे दा मन जबा होंदा है, लोभ निकल जांदा है, वासना निकल जांदी है, शुद्ध मास रह जांदा है, शुद्ध मन रह जांदा है। उसे नू कहंदे ने मन शुद्ध हो गया, मन पावन हो गया। सच की काथी सच सब सार, गाड़त तिसकी अपर अपार। तिसका कुठा होवे सेख, लहू लब निखत्ता वेख। ए शेख, जे इस छुरे दा किधरे तू जबा कीता होया मांस खा लवे, परमात्मा ने कबूल कर लेना है, ईश्वर ने कबूल कर लेना है। खा मांस जरूर खा, पी शराब जरूर पी, पर केड़ी शराब? धन गुरु नानक देव जी महाराज की जिंदगी दे नाल बोल जुड़े हुए ने, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम दी शराब पी, तो नाम शराब है। हां, नाम एक ऐसी शराब है, और ऐसा सरूर तारी हो जाता है,
सारे दुख मिट जांदे ने, सारे विकार निकल जांदे ने। बाहर दी शराब जितने जितने घुट अंदर जाएगी, वो शराब ही अंदर नहीं जा रही, विकार भी अंदर जा रहे हैं। शराबी कामी होवेगा, शराबी क्रोधी होवेगा, शराबी भोगी होवेगा, सारा अनर्थ शराब नाल जुड़ गया। बेशतर मुल्कां दे शराब पानी दी तरह पीती जा रही है, दुराचार आम हो गया, या इंज कह लो दुराचार दे बाजार, बाजार ही दुराचार दा रूप धारण कर गए। बिकदियां सन जिनसां किसे वक्त बाजार विच, कपड़ा बिकदा सी, सोना चांदी बिकदा सी, फल फुल बिकदे सन, पर ए बाजार अज मामूली रह गए ने। स्त्री दी असमत बिकदी है, इज्जत बिकदी है, इन्हां बाजारां दी महिमा बहुत वड्डी होगी। ये नाम मात्र कहलाण वाले क्लब ए थिएटर और इस तरह की आयाश की दुनिया वैश्याले सब असमत फिरोशी दे अड्डे बिकदी है। असमत स्त्री दी बाजार देच हुण दुराचार बिकदा है, बाजार देच वस्तुआ नहीं। अगर कोई नाम दी शराब पी लवे, इस शराब किवें बनेगी? गुड़ कर ज्ञान, ध्यान कर मऊआ, पहु भाटी तन धारा, रब्बी भय दी भट्ठी बना, उदे च रब्बी ज्ञान दा गुड़ पा, उदे च रब्बी ध्यान दा मऊआ पा। मऊआ एक फुल ते भय दी भट्ठी। मनुख समाज तो डरदा है, मनुख कानून तो डरदा है, मनुख परमात्मा तो नहीं डरदा। संकोचमई बिरती बना देंदा है, कानून दा भय, समाज दा भय, भी समाज दियां नजरां नहीं ने ते हुण मैं गुनाह करा, कानून दी पहुंच नहीं है ते हुण मैं पाप करा। है ते पापी पर पाप उत्थे करेगा जिथे तक कानून दी निगाह नहीं पहुंच सकदी। है ते गुनाहगार पर गुनाह उत्थे करेगा जिथे समाज दियां नजरां नहीं पहुंच सकदियां। लेकिन रब दा भय अगर ए मनदा है तो गुनाह होवेगा ही नहीं, पाप होवेगा ही नहीं। रब्बी भय ने पवित्र करके रख देना है, शुद्ध करके रख देना है। ए भय दी तू भट्ठी बना, एदे च पा ज्ञान दा गुड़, एदे च पा ध्यान दा मऊआ। अग केड़ी इस भट्ठी दे तले बालनी है। दो पुर जोर रसाई पाठी, पियो महारस भारी, काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। दो पुर जोर, सुरत ते शब्द नु जोड़, ये दो पुड़ा नु जोड़ के बना चुल्ला, दो पुड़ा नु जोड़ के चुल्ला बनदा है। सुरत दे शब्द नू कठा करे बना चूल्हा, इस देते रख भय दी भट्ठी है। पा ज्ञान दा गुड़, ध्यान दा मऊआ, थले बालन केड़ा डाणा है। काम क्रोध दोए किए जलेता, छूट गई संसारी। काम दा ईंधन, क्रोध दा ईंधन, ए थले बाल। जैसे जैसे तू ज्ञान दा गुड़ पांदा जाएगा, ध्यान दा मऊआ पांदा जाएगा, और जैसे जैसे ते तू सुरत ते शब्द नू इक करदा जाएगा, काम सड़दा जाएगा, क्रोध सड़दा जाएगा, आखिर ईंधन ही ते जलदा है। तो काम ईंधन है, जलेगा, क्रोध ईंधन है, जलेगा। काम क्रोध करके जिंदगी चल दिए, ईंधन करके जिंदगी चल दिए, अग करके ये अग खत्म होवेगी, क्योंकि ईंधन उतने चिर तक ईंधन है जो कारामद होवे। ईंधन उदों बर्बादी बन जांदा है जद अग मकान नू लग जाए, दुकान नू लग जाए, साड़ के राख कर देवे। काम क्रोध दो किए जलेता, छूट गई संसारी। सड़ गया क्रोध, सड़ गया काम। वो जो ज्ञान दा गुड़ सी, वो जो ध्यान दा मऊआ सी, वो ऐसा पकया, उदे चो निकली शराब,
ਨਾਮ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ। ਤੋ ਪੁੱਛੀਏ ਕਬੀਰ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ, ਕੌਣ ਸਿਖਾਉਂਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਗੰਮਤ ਸਤਗੁਰ ਤੇ ਸੁਦਪਾਈ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਤਾਸ ਮਦ ਮਾਤਾ ਉਚਕ ਨ ਕਬ ਹੋ ਜਾਈ। ਇਹ ਸਮਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕਾਮ ਦਾ ਰਸ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਆਉਂਦਿਆਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਚੋਂ ਲੋਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕੇ ਬੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਬੋਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਜੇ ਆ ਜਾਏ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਹੈ, ਮੂੜ ਹੈ, ਨਾਦਾਨ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਏ ਹਲਾ ਹਲ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਏ ਹਲਾ ਹਲ ਹੈ ਵਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾਦਾਂ, ਮਾਲੂਮ ਨਹੀਂ ਤੁਝਕੋ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਪੀਣੇ ਕੇ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਾਮ ਰਸ ਵੀ ਰਾਮ ਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਸ ਵੀ ਕਾਮ ਰਸ ਦੇ ਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਮ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਲਾਲ ਤਰਕਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੌੜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੌੜੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੰਤ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਦੁਸ਼ਟ ਸੰਸਾਰੀ। ਤੋ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਚ, ਜ਼ਹਿਰਮਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਖੀਏ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ, ਸੰਤਰੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ, ਮਿੱਠੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰਸ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾ ਲਈ। ਥੋੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਗ ਤੇ ਕਲਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰ, ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਸਤ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕੇ, ਇਸ ਕਲਾਲੀ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਸਕੇ, ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਰਸ ਪੀਵੇਂ ਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਜਾਣ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪੰਕਤੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਿਖੇ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗਰੀ ਸਖੀਏ ਨਾਮ ਮਹਾਰਸ ਪੀਓ। ਇਹ ਕੀ ਜ਼ਹਿਰ ਤੂੰ ਪੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ, ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫਿੱਕੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਣਾਵੇ।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भो निर्वैर अकाल मुहूर्त अजोनि सैभं गुरु प्रसाद हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निधान जगत गुरु हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो हे शरण जो दयाले दीनानाथ मया करो शरीर स्वस्थ खीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे गुरु रूप सत्संग जियो फतेह कबूल करने वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी हैं, हम कहियत कल युग के कामे। तू की है मैं की हां यदि वजाहत भगत सिरमौर श्री रविदास जी बयान कर रहे हैं। तुम कहियत हो जगत गुरु स्वामी, हम कहियत कल युग के कामे। इस युग देच मनुख दा जेड़ा अवगुण प्रधान है उसका जिक्र पै कर दे। हर समय हर युग देच एक अवगुण प्रधान आउंदा है, ये मैं अर्ज कर दें। बाकी अवगुण भी होंदे न, वो जेर साया आउंदे ने, एक अवगुण प्रधान आउंदा है। हर व्यक्ति देच बहु गिनती देच एक ही तरह का औगण मनुखता दे अंदर प्रधान होवे। 60-70% दे अंदर उस नाल फिर तुलना कीती जांदी है। इस युग का औगण केड़ा है, हर युग का अपना गुण होंदा है, हर युग का अपना औगण होंदा है। हर व्यक्ति का भी बुनियादी गुण कोई एक अद आउंदा है, बाकी गुण उहदे जेर साया आउंदे ने। हर व्यक्ति का बुनियादी औगुण एक आउंदा है, बाकी सारे औगुण उस एक औगुण के पिछे चलते हैं। श्री रविदास ने जो इशारतन गल की थी है, इनू जगत गुरु बाबा वकत दे अवतारी पुरस, इस युग दे अवतारी पुरस धन गुरु नानक देव जी महाराज जिस तरह खोलते ने, ये मैं थोड़े सामने रखा। पूर्ण तौर पर उन्होंने बोलों मैं खोल सकांगा ये तो समर्था नहीं, पर कुछ जो सतगुरु ने शक्ति ते प्रेरणा जिस तरह की प्रदान की मैं थोड़े सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहा। कल कल वाली काम मद, जिन्होंने कदी सिलसिलावार धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का पाठ किया, ये आया होगा वाक श्लोक मरदाना पहला।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਕ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਲਓਗੇ। ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੈ।

पहला सब रस मिठे मनिए सुनिए सालोने खट तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए छती अमृत भाव एक जाको नदर करे बाबा और खाना खुशी खुआर

한다는 걸 원생지 말아 하이다. 허금 레헷 베아리 모지코 시크 베아라나 दरअसल सिख का स्वरूप ही ता बनता है जे उस को रहनी हो गए रहनी दो तरह की मानसिक ते शरीरक मानसिक रहनी है बाणी दा पाठ जपजी साहब जाप साहब सवैये चौपाई आनंद साहब और जितनी बाणी पढ़ सके मूल मंत्र दा जप एक ओंकार तो लेके गुरु प्रसाद तक वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु मंत्र दा जप दो वक्त 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा या जितना उसको समय ये मानसिक रहत है तन दुते पंच ककार ये शरीरक रहत है मन करके सिख बने तन करके ये सिख बने तो मानसिक ते शरीरक रहत चाहिए ना मानसिक रहत होवे ना शरीरक तो धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहंदे ने ए सिख मैनू प्यारा ने क्योंकि इसने पाहुल नहीं ली और रहनी नहीं रखी धरे केस पाहुल बिना देखी मूरख सिख तिसको दर्शन ना है मेरा पापी त्यागे बिख रहत नामे इस तरह के बोलने ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो जिवे कोई खोते नु इशनान करा के उदे गल विच फुलां दी माला पावे और उदे शरीर दिते चंदन इत्यादिक लावे ज्यो काहू पे गधा नवायो फूल माल ताए मूंड धरायो टैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही अगर इस तरह करके कोई खोते नु बाजार विच ले आवे लोकी उस नु वड्याण नहीं लगे बल्कि हसन गए उसते भई लै खोते नु इशनान करा के चंदन ला के गले विच फुलां दी माला पवा के लेके आ गया टैंकी कर ताकी शोभा नाही हासी होए होत जग माही ये प्रमाण किस प्रथाई दिता जा रहा है अगां फरमान कर देने तिम कुरतियन केस रखाए कहो कैसे ओ शोभा पाए इसे तरह जो कुरैती है उसने केस रखे हुए ने मानो खोते नु इशनान कराया गया फुलां दी माला पवाई गई है चंदन आदक लाया गया बस खोते ही रखोता है सिर्फ सिर्फ केस ने ना मानसिक रहत ना बाकी शरीरक रहत भाई साहब भाई नंदलाल दा बड़ा सुंदर प्रमाण निशाने सिखी ई पंज हरफ का जिथे हृदय दी बनावट बनेगी बाणी नाल मूल मंत्र दे जप नाल गुरमंत्र दे जप नाल उथे शरीर सिखी दा स्वरूप पेश करेगा इना पंच ककारा नाल कक्का के

पानी पड़ता है तो मस्तक देच जो शक्ति जमा होती है, रस जमा होता है, वो छेती खारिज ना हो जाए, चला ना जाए, केस मदद कर देने। केसा दे चो भी निकले ना, जल्दी ना खारिज हो गए तो दस्तार मदद कर दी है। इस वास्ते बाकी पहरावा जो असी तन ते पहनते हैं वो समाजिक है, दस्तार धार्मिक है, धार्मिक है। केस रहत देच सिरमौर ने ऋषि मुनिया का रूप ने, मुखड़े का दाड़ा प्रकृति का दिता हुआ पुरुष नो शिंगार है। जैसे असी देख रहे हैं शेरनी दे गल देच, ए लंबे लंबे वाल नहीं, बबर शेर दे जो है गर्दन दिचने। जितना खूबसूरत मोर है, मोरनी उतनी खूबसूरत नहीं, ए लंबे लंबे पंख प्रकृति का दिता हुआ शिंगार है। इसी तरीके दे नाल नर मुर्गा तोता कबूतर मदेन नालों ज्यादा खूबसूरत ने, प्रकृति ने शिंगारे है। दाड़ा कुदरत दा दिता होया एक शिंगार है। इस वास्ते आदि काल तो पुरुष दी शिंगार विच रुचि नहीं रही, स्त्री दी ही शिंगार विच रुचि रही, क्योंकि उसने पुरुष दा मुखड़ा शिंगारिया होया वेख्या तो इत्थों प्रेरित होके उसने अपना मुखड़ा भी अपने ढंग नाल संवारना शिंगारना आरंभ किया। इसनों ते मनो विज्ञानिक भी तस्लीम करते ने, खैर दुनिया का सब तो खूबसूरत पुरुष अगर कोई है तो दाड़े केस वाला है, ऐसा अज दे कुछ विचारक भी मनते ने। तो शीश दे ए केस रहता विच सिरमौर रहत ने ऋषि मुनिया की रूप रेखा, कड़ा सर्व लो हर वक्त बदन नु छूंदा रहे, इस नाल शरीर दी आरोगता ते रहिंदी है, लेकिन खला विच जो अनंत बेशुमार मलीन रूहां घुम रही ने उन्हां तो भी बचाव हुंदा है। कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाज तांत्रिक योगा खास करके काला तांत्रिक, इसका उस पुरुष दे कोई असर नहीं जिसने अपने हाथ विच कड़ा पहने आया है। अज ते असी देखते हैं अनुमति भी है अपने छोटे छोटे बच्चों नूं कड़ा पहनांदे ने ताकि किसी तंत्र विधि का या किसी रूह का परछावा इन्हां ते ना पवे। अज ते नवजायद बच्चे नवे जन्मे बच्चों लई मावां कड़े मंगदियां ने, अनुमति है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सहजे सहजे शायद सारी दुनिया इस कड़े नो धारण कर लवे। कड़ा दाएं हाथ विच पाया जांदा है, किसे भी काम नो करन लगे हां दाया हाथ अगे आउंदा है, एक कड़ा प्रतीक है, तू गुरु दा सिख है और तेरे हाथ विच गुरु दी दित्ती हुई ये निशानी है। इस वास्ते तेरे हाथ कदी गलत काम नो नहीं पैने चाहिए। तो अमृत पीता है, अमृत छके है, लिहाजा तेरे इस हाथ दे शराब दी बोतल ना होए, तेरे हाथ किसी ते जबर ना करन, तेरे हाथ किसी दा हक ना खोवन। तो गुरु दी निशानी हाथ दे च पहनी हुई है। कछहरा एक ऐसा पर्दा और इसका इतना मनोविज्ञानिक मन दे असर है कि सहजे सहजे अज ते सारी दुनिया ने धारण कर लिया है। भावे और रूप ना होवे जो कलगीधर ने सानो दिता है, पर कुछ ना कुछ कछहरे दी बनावट जैसा ही कछहरा सारी दुनिया ने आज धारण कर लिया और इसनु शरीर दी और मन दी एक खास लोड़ समझ लिया गया। कंगा केसा दी सफाई लई ते है, लेकिन इस दे नाल जप तप करन तो बाद जो थोड़ी जिया दिमागी थकावट या शरीरक थकावट हो सकती है, इस कंगे दे बार बार सिर ते फेरन नाल मस्तक हौला हो जाता है और थकावट दूर हो जाती है और नाले केस समर जाते हैं। कृपा ठीक है, आज
ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬੰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ।

पैर देच, कोई पूर्ण संत नहीं है। किधरे किधरे जंगल देच, चंदन है, किसे किसे शहर देच, कोई एक अद संत है, बैठा है, अपने मन नाल संघर्ष करके परम आनंद की प्राप्ति देच लीन है, परमात्मा तक पहुंचने की जो है कोशिश देच लीन है। तो जेड़े जेड़े लोग मन नाल संघर्ष ना कर सके, वो संसार नाल संघर्ष करन नू तत्पर हो गए है, और उन्हां लई समा मददगार बनया रात दी तारीकी। रात दी तारीकी तो जो डर पैदा हो गया, जो खौफ पैदा हो गया, दरअसल रात खौफनाक नहीं है। रात दी तारीकी विच डाकू, दुराचारी, चोर उस तारीकी दा लाभ उठा के अपना काम कर देने, यही कारण है रात डरावनी बन गई, रात भयानक बन गई। रात दी तन्हाई विच किसे एक पासे जाना कोमल लोगां लई औखा हो गया, कठिन हो गया। क्यों? रात दी तारीकी दे चोरां दे ग्रोह हो सकदे ने, डाकुआं दे ग्रोह हो सकदे ने, दुराचारियां दे ग्रोह हो सकदे ने। रात भयानक हो गई, रात डरावनी हो गई। जिन्हां जिन्हां ने भी समाज नाल संघर्ष कीता, कानून नाल संघर्ष कीता और दुनिया नूं दुखद कीता, उन्हां ने रात दी तारीकी नूं वरत्या। जिन्हां ने अपने मन नाल संघर्ष कीता ते परम आनंद दी प्राप्ति कीती, उन्हां ने अमृत वेले तो मदद ली, सुबह तो मदद ली, अल्लाह दी सुबह, ब्रह्म मुहूर्त तो मदद ली, अमृत वेले तो मदद ली, और वाकई उस समय ने मदद की थी, बड़ी भारी मदद की थी, और बहुत वड्डी सौगात उस पुरुष दी झोली च पा दिती। उस समय ने सहायक बनके, मददगार करके बनके, तो होया कि जीवन अमृतमयी हो गया, बोल अमृतमयी हो गए, दृष्टि अमृतमयी हो गई। अमृत वेले ने रोम रोम नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने दृष्टि नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने स्रोत नु अमृत कर दिता, अमृत वेले ने रसना नु अमृतमयी कर दिता, अमृत वेले ने दिल दिमाग नु अमृतमयी कर दिता। सोचनी अमृतमयी हो गई, बोलनी अमृतमयी हो गई, वेखनी अमृतमयी हो गई। भावे प्रभु चिंतन नाल ए सब कुछ होया, पर मदद अमृत वेले दी, ब्रह्म मुहूर्त दी, अलल सुबह दी। किन्ने खुशकिस्मत लोग ने हो जो इस समय तो लाभ उठा के अपने मन नाल संघर्ष करन नू जुट पैंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, हां संसारिक कामना मन विच रखण वाले किसे वक्त भी इबादत कर सकदे ने, उन्हां दा अपने मन नाल संघर्ष नहीं आउंदा, बल्कि प्रभु दे कोलों कोई मंग आउंदी है, कोई चाहत आउंदी है। वो चाहत अपनी शक्ति नाल, अपने परिवारिक बल नाल उस वस्तु नूं पा नहीं सकदे, तो प्रार्थना दे अगों, परमात्मा दे अगों प्रार्थना है। कहिंदे ने जद भी मनुख असफल हो जाए और सफलता उसनूं बहुत कोसों दूर दिखाई देवे और अपना बल कम करदा या ना दिखाई देवे, तो फिर वो ईश्वर दे अगों हथ जोड़दा है, हे परिपूर्ण परमात्मा तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर। पर अमृत वेले जो उठ के नाम जप रहा है, वो परमात्मा नूं इंज नहीं कहिंदा मेरी ए इच्छा पूरी कर, मेरी ए इच्छा पूरी कर, वो इंज कहिंदा हे प्रभु जो तेरी इच्छा होवे उस विच मैं राजी होवां, जो तेरी रजा होवे उस विच मैं राजी होवां। बस यही फर्क है एक सच्चे इबादत गुजार मनुख दे और एक दुनियादार मनुख दे, ये फर्क है। एक कह रहे है हे प्रभु मैं सजदा कर रहा, मैं जोदड़ी कर रहा, मैं तेरी इबादत कर रहा, तू मेरी ए इच्छा पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर, तू मेरी ए कामना पूरी कर। करीबन करीबन असी देखते हां एक पिता भी सियाणा है, किस दो तीन साल दे बच्चे दी लोड़ की है, एक साल दे बच्चे दी लोड़ की है। अगर मां नूं पता ही नहीं, प्यो नूं पता ही नहीं, तो शायद ये मां बाप एवें बन गए ने, ये मां बाप हैं नहीं। इस दो तीन साल दे मासूम बच्चे दी वास्तविक लोड़ा की ने मां समझदी है, प्यो समझदा है, और इस बच्चे नूं मंगनी करनी पैंदी, क्योंकि अजे विचारा मंगण जोगा भी नहीं, मां पूरी करदी है उसकी मंगा नूं।